मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:57 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में

0: दो प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: जैसे अपनी उन्नति की चाहना करे वैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट अन्यों की उन्नति की प्रार्थना ही न करे किंतु सत्य भी अपनाए। जब जब विद्वानों के निकट जाए तब तब सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया करे। मनुष्य को चाहिए वो जैसे अपने लिए सुख चाहे वैसे ही दूसरों के लिए भी चाहे। जैसे कोई अपने लिए दुख नहीं चाहेगा वैसे ही औरों के लिए भी न चाहे। वेदों को जानने वाले ही धर्म के आचरण और अधर्म के त्याग से सुखी होने के समर्थ होते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थी और विचारशील विद्या को जानने वाले हैं वे ही संसार के भूषण होते हैं। जिससे बड़ा दयावान न्यायकारी और अत्यंत सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसने वेद प्रकट करने के द्वारा सब मनुष्य सुशोभित किए, जिसने अद्भुत ज्ञान और धन जगत में विस्तृत किया और जो योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य है, वही ईश्वर हम लोगों के लिए अति उपासना करने योग्य है। तुम्हें ये जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभाचरण से अलग कर शुभाचरण में प्रवृत्त करता है वैसे राजा भी करे। जैसे परमेश्वर में पितृभाव करने अर्थात उसको पिता मानते हैं वैसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत बढ़ते। जैसे परमेश्वर सब दोष क्लेश और अन्यायों से निवृत्त है वैसे राजा भी हो। जात पात ऊंच नीच और छुआछूत राष्ट्र के पतन का मूल है। जब पांच पांच वर्ष के लड़के लड़कियां हों तब उन्हें देवनागरी का अभ्यास कराना है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और कश्मीर से आसाम पर्यंत निवास करने वाले समस्त भारतवासियों के लिए है। प्रत्येक बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से इसका बोध कराना मुझे अभीष्ट है। योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों के कुशलता पूर्वक सिद्ध करने को योग कहते हैं। योग का अर्थ मेल है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर एवं जातिवाद के दुर्ग पर प्रहार करके मेल का मार्ग प्रशस्त करें। योग का अर्थ जोड़ भी है। शुद्धि का मार्ग विस्तृत करें। योग का एक अर्थ चिकित्सा भी है। इसलिए अज्ञान अंधकार में भटकती हुई मानवता के सच्चे चिकित्सक बनो।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वामी दयानंद के विचार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: कार्यक्रम वंदना में अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे सुमन कल्याणपुर, चंद्रु आत्मा, हेमंती शुक्ला और साथियों ने। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वामी दयानंद के विचार।
1: मनुष्य जैसे अपने लिए गुण, कर्म, स्वभाव और सुख को चाहे, वैसे औरों के लिए भी चाहे।

अब से कुछ ही देर में 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में बरसात का मौसम और पशु रोग विषय पर डॉक्टर ए के सिंह की वार्ता।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर सुनेगा बच्चों में टीकाकरण कब और कैसे विषय पर डॉक्टर अर्चना राजपूत की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा प्रातः 7:31 पर। प्रातः 9:25 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुनेगा प्रार्थना की उपयोगिता पर विचार। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर शशि तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा बेगम परवीन सुल्ताना का राग दीन तोड़ी में और तोड़ी में ख्याल गायन। कार्यक्रम आज के कलाकार में 11:00 आज के कलाकार रहेंगे फिल्म गीतकार गुलशन बावरा।

11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज का विषय रहेगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र को सशक्त बनाने में हथकरघा बुनकरों का योगदान। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी प्रसारित किया जाएगा 12:00 बजे।

हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार दोपहर 1:15 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा माँ का दूध शिशु का सर्वोत्तम आहार। मेरी पहचान सेगमेंट में आप सुनेंगे शीतल देवी के विषय में, और इसी के साथ सुनेगा कवियत्री भावना मेहरा से काव्य पाठ, जिसका विषय है जिंदगी का कारवां। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे संवेद स्वर में चंद गजलें।

दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, जिसमें आप सुनेंगे मकाला अबुल कलाम आज़ाद शख्सियत ओ खिदमत। मकाला निगार रहेंगी मोहतरमा शवगुफ्ता यास्मीन। कलामी शायर के तहत शिरकत करेंगे मोहम्मद फराज मुजीब और अपना अफसाना रोशन चिराग पेश करेंगी अफसाना निगार महमूदा कुरैशी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे, श्रीकांत पारुगांवकर और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर और संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं बरसात का मौसम और पशु रोग, और वार्ताकार हैं डॉक्टर ए के सिंह।
1: प्रिय किसान बंधु, बरसात के मौसम में वायुमंडल में नमी एवं तापक्रम बढ़ जाने से जीवाणुओं, सूक्ष्म परजीवियों और फफूंदी को पनपने के लिए अनुकूलता प्राप्त हो जाती है और पशुओं में रोग पैदा करने वाले कीटाणु ऐसे वातावरण का लाभ उठाकर पशुओं के शरीर पर आक्रमण कर बैठते हैं। हमारे भारतवर्ष में अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहाँ के गरीब किसान साल भर अपने जानवरों को उचित पौष्टिक आहार एवं हरा चारा नहीं खिला पाते हैं, और विशेषकर गर्मियों के महीने में पौष्टिक चारे की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाती है। पौष्टिक चारे के अभाव में पशु कमजोर और शिथिल पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर की प्रतिरोध क्षमता घट जाती है, और वर्षा शुरू होने से पहले पशुपालकों द्वारा लापरवाही बरतने पर पशुओं में बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली मुख्य रोग इस प्रकार से हैं। नंबर एक, गला घोंटू। इस रोग का कारण एक प्रकार का जीवाणु होता है और यह रोग गाय, भैंस और उनके वंशजों को होता है। यह जीवाणु रोगी पशु के मलमूत्र एवं लार द्वारा बाहर निकलकर वातावरण एवं भोजन को दूषित कर देते हैं। तराई क्षेत्र में यह रोग अधिक होता है। यह रोग वर्षा के दिनों में विशेष फैलता है और इस बीमारी के लक्षणों में पशु को तेज बुखार, जबड़े के नीचे व झालर में गर्म कठोर सूजन के साथ दर्द शुरू हो जाता है। पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है, मुँह से लार गिरती है, आँख सुर्ख व लाल हो जाती है। इस रोग से 80 से 100% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अतः किसान भाइयों को पशुओं में इस रोग के लक्षण दिखते ही नज़दीक के पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए और साथ ही प्राथमिक इलाज के रूप में बताई गई चिकित्सा एवं उपचार करने चाहिए। लोहे की गर्म सलाख से दागने पर सूजन का बढ़ना रुक जाता है, जो कि एक देशी इलाज है।

0: मिजादिन की दो दो गोली दिन में 3 बार रोटी या गुड़ में दिया जाए। टेरामाइसिन की 500 मिलीग्राम की 3 गोली एक साथ रोटी या गुड़ में 2 बार दिया जाए। इस रोग से बचाव के लिए टीके बाजार में उपलब्ध हैं और यह टीके पशुपालन विभाग तथा डेयरी विभाग के माध्यम से भी लगाए जाते हैं। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे पशुओं की इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए वर्षा आरंभ होने से पूर्व गलाघोटू के टीके जरूर लगवाएं। दूसरा रोग लंगड़ी रोग कहलाता है और इस रोग का कारण भी एक जीवाणु होता है। यह रोग गाय, भैंस व उनके वंशजों में होता है और 6 माह की आयु से युवा पशु इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षणों में पशु को तेज बुखार, शरीर पर खास तौर से पिछले पुट्ठे पर गर्म दर्द वाली सूजन, कभी-कभी गर्दन, सीना और कंधे पर पाई जाती है। सूजन में चढ़-चढ़ की आवाज़ होती है। पशु लंगड़ाकर चलने लगता है। पशु की मृत्यु कुछ ही घंटे में हो जाती है। इस रोग के प्रारंभ में लोहे की गर्म सलाख से दागने पर सूजन का बढ़ाव रुक जाता है। इसके अलावा सल्फामिजाथिन की दो दो गोली दिन में 2 बार गुड़ या रोटी में दें। साथ ही टेरामाइसिन की 500 मिलीग्राम की एक साथ 3 गोलियां गुड़ या रोटी में दें तथा स्वस्थ पशुओं को लंगड़ी बीमारी से बचाव का टीका लगवाएं। इसी प्रकार विषाणु जनित रोगों में जुगाली करने वाले पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका का रोग हो जाता है। यह विषाणु रोगी पशु के लार, जीभ, पांव के घाव से बाहर आकर जल और आहार को दूषित कर देते हैं, जिसके खाने से स्वस्थ पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस रोग में पहले जाड़ा देकर तेज बुखार, ओट, मसूड़े और जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं। मुंह से तार के समान बराबर लार गिरती रहती है। खुरों में घाव होने से पशु लंगड़ाने लगते हैं। दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है। इस बीमारी से बड़े पशु कम मरते हैं, परंतु 3 माह से कम आयु वाले बच्चे अधिकांश मर जाते हैं। इस बीमारी के इलाज में रोगग्रस्त पशु के मुंह के घाव को फिटकरी या लाल दवा के घोल से धुलाई कराएं तथा मुंह के छालों के लिए 1 भाग बोरिक एसिड और 8 भाग ग्लिसरीन मिलाकर लेप करें। बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका रोग का टीका लगवाएं। उपरोक्त बातों के अलावा संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पशुपालक भाई पहले से ही सावधानी बरतें तथा उसके लिए उपाय करें, जैसे कि जिस स्थान पर पशु बांधे जाते हैं उसे साफ सुथरा एवं सूखा रखना चाहिए। यदि फर्श कच्चा हो तो उसकी भली भांति सफाई करके उस पर चूने का छिड़काव करना चाहिए। पक्के फर्श को नित्य फिनाइल युक्त पानी से धोना चाहिए और सूखने के बाद ही उस पर पशु को बांधना चाहिए। पशुओं को तालाब अथवा पोखरे का गंदा पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि गंदे तालाबों में बीमारियों के कीटाणु अथवा परजीवी कीटों या परजीवी जीव की अवस्थाएं मौजूद हो सकती हैं। अतः दूषित जल पीने से पशुओं में रोग फैल सकता है। पशुओं के गोबर एवं मूत्र को शीघ्र पशुशाला से हटाकर कंपोस्ट खाद वाले गड्ढे में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से गोबर मूत्र की खाद बनेगी और पशुशाला में मक्खियों का प्रकोप भी कम होगा। इतना सब करने के बावजूद भी यदि आपके पशुओं में रोग फैल जाता है तो ये बताई हुई सावधानियां बरतें। बीमारी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधें और उनकी देखभाल भी पृथक रूप से करें। स्वस्थ पशु को बाहर चरने न भेजें, बल्कि खूंटे पर बांधकर उसको चारा पानी दें। रोग से मरे पशु को पशुशाला अथवा घर से उठाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए। मृतक पशु की खाल नहीं उतरवानी चाहिए। किसान भाइयों से अनुरोध है कि पशुओं को टीका लगवाने से पूर्व यह जांच करवा लें कि पशुओं के पेट में पलने वाले कीड़े तथा परजीवी मौजूद न हों, और इसके लिए छोटे तथा बड़े पशुओं को उनके शारीरिक भार के अनुसार कीड़ों की दवा पिलाएं। पशुओं में संक्रामक रोगों का इलाज कठिन और महंगा पड़ता है, जबकि टीका लगवाना सस्ता पड़ता है। इसलिए किसान भाई समय रहते पशुओं को संक्रामक रोगों का टीका अवश्य लगवा लें। यह सभी टीके आपके नज़दीकी पशु चिकित्सालय में उपलब्ध हैं और हमें आशा है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ किसान भाई उठाएंगे, क्योंकि कहावत है कि इलाज से बचाव करना बेहतर है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे बरसात का मौसम और पशु रोग विषय पर डॉक्टर एके सिंह की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। सुनो ना।
1: हाँ। उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशा राज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षण क्षेत्रात् मध्यम परिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवा राज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवाराज्ये अनुसूचित जनजातीनां कृते विधानसभा स्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीय राजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरल राज्ये, माहे प्रदेशे, ओडिशा राज्ये, तटीय दक्षिणांतर्गत कर्नाटके च मेघावृष्ट्या प्रचंड बातेन विद्युत प्रभावेन च सह प्रचंडतः अतिप्रचंडायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अंडमान निकोबार द्वीपेषु, झारखंड प्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिम बंग प्रदेशे, मध्य प्रदेशे, तमिलनाडु प्रदेशे, पुदुच्चेरी प्रदेशे, कारैकल प्रदेशे, उत्तराखंड प्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांतचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दो प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों

0: की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
1: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as a chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage and recognize the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Union Cabinet has approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing Media New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. The Centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities.

0: ये आशा आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर अर्चना राजपूत की वार्ता बच्चों में टीकाकरण कब और कैसे विषय पर।
1: टीकाकरण या वैक्सीनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसी बीमारियां जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत तेजी से फैलती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। यदि समय रहते इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एपिडेमिक या महामारी का रूप ले लेती हैं। अतः कम्युनिकेबल बीमारियों की रोकथाम या प्रिवेंशन का सबसे अच्छा एवं सस्ता तरीका वैक्सीनेशन या टीकाकरण है। वैक्सीनेशन शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बीमारी के प्रति बढ़ती है। तुरंत पैदा हुए बच्चे में यह प्रतिरोधक शक्ति माँ से मिलती है। दो वैक्सीन के बीच में 3 से 4 हफ्ते का अंतराल होना आवश्यक है। जन्म के समय BCG और ओरल पोलियो की वैक्सीन देते हैं। 6 हफ्ते या 1.5 महीने की उम्र में DPT, जिसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनेस, इन तीनों की वैक्सीन जिसे DPT कहते हैं देते हैं, और ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 6 हफ्ते या 1.5 महीने की उम्र में दी जाती है। 10 हफ्ते या 2.5 महीने की उम्र में DPT, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। 9 महीने में मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। 15 महीने या 1.5 साल की उम्र में MMR यानी मीजल्स, मम्स और रुबेला, इसकी वैक्सीन दी जाती है। इसकी सेकेंड डोज यानी MMR की सेकेंड डोज 4 से 6 साल में लगाई जाती है। 18 से 24 महीने में फर्स्ट बूस्टर डोज DPT की देते हैं और ओरल पोलियो की देते हैं। 24 महीने या 2 साल की उम्र में टाइफाइड की वैक्सीन दी जाती है। यह वैक्सीन हर 3 साल पर बूस्टर डोज में लगाई जाती है। 4.5 साल से 5.5 साल की उम्र में सेकेंड बूस्टर डोज DPT की और ओरल पोलियो की देते हैं। हेपेटाइटिस बी ये वैक्सीन जब भी शुरू करें

इससे पहले पहली डोज जब लेते हैं उसके 1 महीने बाद दूसरी डोज ली जाती है और 6 महीने के बाद तीसरी डोज ली जाती है। यदि बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है या बुखार है, दस्त है या फिर उल्टियां हो रही हों, तो ऐसी स्थिति में टीकाकरण नहीं कराना चाहिए, बल्कि उसे ठीक होने के बाद थोड़े समय बाद दोबारा डॉक्टर से परामर्श करके टीका लगवाना चाहिए। टेटनेस का टीकाकरण माताओं में गर्भावस्था से ही शुरू कर दिया जाता है, जिससे नवजात शिशु को टिटनेस के प्रति माँ से इम्यूनिटी मिल जाती है। टिटनेस का पहला टीका गर्भवती महिला को 14 से 16 हफ्ते में लगवाना चाहिए तथा दूसरा टीका 24 से 26 हफ्ते में लगवाना चाहिए और तीसरा टीका 32 से 34 हफ्ते में लगाना चाहिए। इस तरह हमें बच्चों में टीकाकरण के लिए जागरूक रहना चाहिए और हर तरह से जैसे भी संभव हो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर बच्चों को टीका जरूर लगवाना चाहिए। इस तरह से अगर हम बच्चों का समय से टीकाकरण करवाएं तो बहुत सी कम्युनिकेबल बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। यह सभी वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना राजपूत की वार्ता। विषय था बच्चों में टीकाकरण कब और कैसे। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: था अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। आज हैंडलूम से खरीदारी करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। घुमंतू समाज द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों से उत्साह और उमंग के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की है।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटी होती है।
0: प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने को कहा।
1: हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित कर, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

0: स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गोबरधन योजना को मंजूरी दिया जाना आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
1: केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को

0: वह नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के लिए घुमंतू समाज द्वारा आयोजित आभार ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था, उसी संकल्प का विस्तार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं।
2: स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी और उन्नाव सहित बाढ़ प्रभावित 8 जनपदों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए इन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी तत्परता से जारी रहें और कहीं भी सहायता में कोई कमी ना रहे। इससे पहले एक अन्य उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने 85 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए।
4: अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से अनुसंधान, नवाचार और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की अपील की। इससे पहले वह HPV से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में चल रहे निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में भी पहुंची। वहां उन्होंने टीकाकरण करवाने वाली बच्चियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्राओं से HPV से बचाव के टीकाकरण के साथ साथ बेटियों की शिक्षा और नशा मुक्त युवा अभियान की महत्ता के बारे में भी चर्चा की। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक जन आंदोलन में बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी कल खतरे के निशान को पार कर गई। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है।
5: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। मरगूब हुसैन।

0: आकाशवाणी समाचार अमरोहा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज से लेकर आगामी 9 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। आज हैंडलूम से खरीदारी करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबर धन योजना को दी मंजूरी। घुमंतू समाज द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल हो स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। बीमा दावा निपटान में देरी पर हर्जाना मिलेगा। सरकार ने बीमा दावे की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और आसानी से भुगतान के लिए अहम बदलाव किए हैं। इनमें सबसे पहले अहम प्रावधान, समय पर भुगतान न करने पर बीमा कंपनियों को 2% ब्याज के साथ दावे की रकम देनी होगी। दावा खारिज करने के लिए समिति की मंजूरी जरूरी कर दी गई है। बीमा धारकों के दावों से संबंधित निस्तारण में आ रही दिक्कतों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने यह बताया कि सरकार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर दावों के निस्तारण पर नजर रख रही है। अगर किसी वजह से दावे के भुगतान में देरी की जा रही है तो उसके लिए बीमा कंपनी की जवाबदेही भी तय होनी है। जीवन स्वास्थ्य बीमा के साथ साधारण बीमा से जुड़ी हर पॉलिसी की भुगतान प्रक्रिया के लिए ग्राहकों के हितों में नियम निर्धारित किए गए हैं। अब कोई भी कंपनी दावे को आसानी से खारिज नहीं कर सकती है। दावे से समय लेकर समय पर भुगतान से जुड़ी सारी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेही भरी होगी।

ग्रुप सी परीक्षा 9 को 12,000 लोग बैठेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार

में अपर जिलाधिकारी ने एक बैठक निर्धारित की, जिसकी अध्यक्षता की। उसमें परीक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों के आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। परीक्षा 9 अगस्त को सुबह 10 बजे दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इसके लिए जिले में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 11,808 लगभग 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 26 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 महिला और 3 पुरुष पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी।

पॉलिटेक्निक संस्थाओं में चतुर्थ काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु चल रही काउंसलिंग का अंतिम चरण 6 से 14 अगस्त तक है। राजकीय चर्म संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि 6 से 10 अगस्त तक अभ्यर्थी अपनी पसंद की शाखा और संस्था चुन सकेंगे। 11 अगस्त को परिणाम जारी होगा। 12 से 14 अगस्त तक परिषद की ओर से बनाए गए हेल्प सेंटर में अभ्यर्थी अपने प्रपत्रों का सत्यापन करा सकेंगे। इसके उपरांत आवंटित संस्था में प्रवेश लेंगे।

अगले 3 दिन तक फुहार, 10 को भारी वर्षा का अलर्ट। आगरा में मौसम बदल चुका है, 3 दिन से बारिश हो रही है, गुरुवार को सुबह से बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों तक बूंदाबांदी और रिमझिम बारिश होगी। 10 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना है, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि आगरा में बदलते मौसम के बाद 2 दिन से बारिश की स्थिति है, सुबह से लेकर रात तक रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे तापमान में बड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को दिन का पारा 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, न्यूनतम तापमान भी 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, बारिश भी 25.8 mm दर्ज की गई, हवा में आर्द्रता का स्तर भी 98% रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मौसम इसी प्रकार रहेगा, दिन में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

प्रशिक्षण शिविर 9 अगस्त को होगा। सेवा भारती ब्रिज प्रदेश की ओर से एक दिवसीय निशुल्क मेहंदी राखी ब्यूटिशियन और पोशाक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। किशोरी विकास आयाम की प्रमुख ने बताया कि शिविर 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कचहरी घाट स्थित पत्तल गली जैन धर्मशाला में आयोजित होगा। इसमें प्रतियोगी को विभिन्न प्रशिक्षण आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जाएगा। क्लैट के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक भरे फॉर्म। देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य विधि संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2027 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्नातक और परास्नातक विधि कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। क्लैट का आयोजन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से कराया जाता है। अभ्यर्थी कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले सक्रिय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार का फोटो और हस्ताक्षर सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का 12वीं में न्यूनतम 45% अंक होने अनिवार्य हैं। वहीं परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए LLB में कम से कम 50% अंक आवश्यक हैं। क्लैट 2027

की परीक्षा 6 दिसंबर को पेन पेपर मोड में आयोजित होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

श्रोताओं अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। एक सूचना के अनुसार मोनिका उर्फ महामुनि निवासी कच्चीगढ़ी थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ दिनांक 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनका कद 4 फुट 5 इंच रंगोरा चेहरा गोल है। इन्होंने काली साड़ी और पैरों में काली चप्पल पहन रखी हैं। इस महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार आजाद पुत्र रविशंकर निवासी नौरी थाना अतरौली दिनांक 23 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष कद 5 फुट रंगे हुआ चेहरा गोल है। इस व्यक्ति की बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार तनु पत्नी संतोष कुमार निवासी खेड़िया बहादुरगढ़ी थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ दिनांक 23 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष कद लगभग 5 फुट रंगे हुआ चेहरा गोल है। इन्होंने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। इस महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

प्रूफ परीक्षाओं के लिए एनटीए ने निकाली भर्ती। नीट यूजी पेपर लीक के बाद उठ रहे सवालों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षाओं को फुल प्रूफ तरीके से कराने के लिए अधिकांश पदों के लिए एनटीए की भर्ती निकाल दी है, जबकि कुछ पदों के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालने की तैयारी की जा रही है।

1687 रुपए बढ़ी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में 25% की वृद्धि कर दी गई है। बाल शिक्षा भत्ता अब 2250 रुपए से बढ़कर 2812 रुपए प्रति माह तय किया गया है। इसका मतलब है कर्मचारियों को प्रति माह सीधे 562 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके लिए वास्तविक खर्च के भारी भरकम बिलों की बाध्यता नहीं रहेगी और तय दर के अनुसार भुगतान होगा। घर से दूर हॉस्टल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिलने वाली हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपए से बढ़ाकर 8483 प्रति माह कर दी गई है। सीधे 1687 रुपए की प्रति माह बढ़ोतरी हुई है। MBBS और BDS की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज के में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग शुक्रवार यानी कि आज से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय ही सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय की महानिदेशक ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया शुक्रवार दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12 अगस्त दोपहर 2 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी 12 अगस्त शाम 5 बजे तक पंजीकरण और धरोहर यानी कि सिक्योरिटी राशि जमा कर सकेंगे। DGME ने स्पष्ट किया कि ये काउंसलिंग प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में संचालित MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की राज्य कोटा सीटों के लिए होंगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

0: मैं वापस आऊंगा।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
2: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
3: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित

0: संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा

0: दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर

0: स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate MDR on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
4: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के

0: tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असरेनो तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के निफास को नोटिफाई किया है जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारतीय गजट में शाय करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हलके की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरी इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चौबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निजाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाजत देने का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सारिफीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निजाम कायम करना है ताकि डिजिटल अदायगी के निजाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को खत्म करना है जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाकई मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिजाइल अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिजाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। यह आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान ने अंजाम दी है। वजारत ने मजीद कहा है कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान और डीआरडीओ को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क का दिफा करने के अज़्म का एहादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशोखरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आजादी के एक हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और

0: जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनपों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं।
1: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलुकत पाबित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तआवुन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबात की एक अहम खसूसियत साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ्फुज़ में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत, तराजी और ताउन के एतराफ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनवे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंकिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनव और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज के बाद से यह दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फन, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक खास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रांची में JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेजब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैशलाइट एहतजाजी मार्च किया। बाद में रांची सदर के SGM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामा निगारों से बात करते हुए SGM रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाजाब्ता तौर पर मधु नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शुमाल मशरक के हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी।

0: दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निजाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तेसनाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाब्ता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आजादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया जिनमें रियासत भर में 70 लाख कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुलवतनी के नजरिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दोतरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लूक गोह ने की। तरफैन ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादले ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैनुल अक्वामी और इलाकाई फोर्म्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया था जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे खवातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। खवातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले खवातीन टी20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है पार्लियामेंट में जारी तातुल खत्म करने की कोशिशें तेज। इस्मत दरी केस में साफी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा, ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप ने RBI के जरिए पॉलिसी सूद की शरह 5.25% पर बरकरार रखने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने दिल्ली NCR में बारिश से मुतालिक खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज पर ईरान और ओमान के दरमियान इत्तेफाक, वादों पर अमल करने के अमरीका के मुस्बत इशारे, अमरीकी सदर वजीर दिफा पर सख्त बरहम, हथियारों की कमी पर जवाब तलब किया।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने UPI लेनदेन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्

ली है और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को फिल्म साजन में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म राजा का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म राधा राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला था नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं साधना सरगम और उदित नारायण के स्वर में फिल्म अनाड़ी का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर। सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।

0: नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
3: बस्ती के एक युवा की पहल ने केवल ऐतिहासिक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बन गई। बस्ती के आकाश गुप्ता की यह उपलब्धि आज जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बस्ती जिले के हरैया तहसील के लजघटा गांव के युवा आकाश गुप्ता को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। भगवान राम के प्रतिष्ठ यज्ञ स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक मनोरमा नदी के संरक्षण के लिए किए गए उनके अभियान को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहा था और अब उन्हें 15 अगस्त के समारोह में आमंत्रित किया गया है। बस्ती जिले के युवा आकाश गुप्ता ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। लगातार 4 महीने तक श्रमदान कर टीम ने करीब 400 मीटर तक नदी की सफाई और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। आकाश और उनकी टीम के इस प्रयास की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्य की सराहना करते हुए जन भागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बताया था। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए आकाश गुप्ता को आधिकारिक निमंत्रण पत्र पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने सौंपा। इसके बाद आकाश गुप्ता की टीम के साथ गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस संबंध में आकाश गुप्ता ने बताया कि
4: जब हमने ये सफाई का अभियान शुरू किया था तब से लेकर आज तक हमें 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 134वें एपिसोड में हमारी नदी सफाई अभियान का उसने जिक्र किया और राष्ट्रपति जी ने भी हमें एट होम रिसेप्शन में इन्वाइट किया। उसके लिए हमें दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना करते हुए इतना हमारे लिए किया, हमारे लिए गर्व की बात है और हम लोग चाहेंगे हम लोग ऐसे ही और आगे काम करते रहे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे।
3: बस्ती के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बस्ती जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड और इमरजेंसी वार्ड समेत एक्सरे विभाग का भी निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों का मंत्री ने हाल भी जाना। इस दौरान श्री शाही ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बस्ती चिकित्सालय में लैब आम आदमी को निशुल्क जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर हो सके। बस्ती जिले की पुलिस ने 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सर्विलांस सेल द्वारा लगातार चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न कंपनियों के कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से कटान भी तेजी से हो रही है। नदी किनारे लगे कई पेड़ नदी में समाहित हो गए हैं। गांव वालों ने चिंता व्यक्त की है। दर्जनों गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने सदर तहसील के ग्राम एहतमाली और बैराजी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और राहत बचाव कार्यों में प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए। नाव राहत शिविरों और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधनों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने बाढ़ विभाग के तटबंधों और संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी करने का निर्देश देते हुए जल स्तर बढ़ने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। बस्ती जिले के बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सावन के पहले सोमवार को बस्ती जिले के प्रसिद्ध भदेश्वरनाथ धाम सहित जनपद के तमाम शिव मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर 7 अगस्त की शाम से 11 अगस्त की शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 बंद कर दिया जाएगा, जबकि कांवड़ियों के ठहरने खाने पीने के साथ समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था हेतु 12 जनपदों के साथ

0: स्थानीय पुलिस पीएससी लगाई गई है। जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने भदेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन सजग है और व्यापक व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया कि
1: कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पहले से ही सजग है, तो निरंतर हमारी व्यवस्था चल रही है। जहाँ जहाँ पे हमें कमी मिलेगी उसको हम तुरंत तुरंत ठीक का काम कराएंगे।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
3: श्रद्धा साधना शिव भक्ति में सावन का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन माह के प्रथम सोमवार को जनपद के प्राचीन संगमेश्वर, पतालेश्वर, मनासेश्वर, मतंगेश्वर शिव मंदिरों में भक्त सुबह से भक्तों का सैलाब मोड़ते हुए लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बेल पत्र, चावल, घी, धतूरा, फल, शहद, दूध, जल से जल अभिषेक और पूजन अर्चन किया। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अगले 5 वर्षों तक यानी 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाए जाने पर जनपद हमीरपुर का किसान खुशी जाहिर की है, क्योंकि खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों को प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 4 मई में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में जानकारी देते हुए उपनिदेशक प्रमोद कुमार कहते हैं कि
4: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 2,13,460 किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि जिसका लैंड रिकॉर्ड की लैंड सीडिंग नहीं हुई है उसको पूरा करा लें। आपके जैसे पति पत्नी दोनों पा रहे हैं तो उसमें से एक का सरेंडर कर दें और अगला फिर वो चालू हो जाएगा। उनका आधार सीडिंग करवा लेंगे तो आपके वो डेटा बिल्कुल सत्य हो जाएगा और आपकी जो रुकी हुई किस्त आने लगेगी।
3: जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की स्थापना दिवस के अवसर पर सुमेरपुर ब्लॉक के दरियापुर गांव में जिला ग्रामोद्योग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन कर पारंपरिक माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को आधुनिक तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा रोजगार से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज शुक्ला कहते हैं कि
5: वर्ष 2017 में इसका बोर्ड का गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसका नवा स्थापना दिवस भी अभी मनाया गया है। इसमें जनपद प्रशासन स्तर से जो भी आवंटित होते लक्ष्य विद्युत चालित चार, ये इस बार 25 का टारगेट आया हुआ, 20-25 का टारगेट आता है। हम लोग की जो सदस्यता में कमेटी गठित होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी प्राप्त होते हैं उनको निःशुल्क चार्ज 25 का टारगेट 25 वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग समय समय पर जिसकी ट्रेनिंग निर्धारित है, हमारे यहाँ जनपद कालपी में ट्रेनिंग सेंटर है, तो आधुनिक वर्तनों का निर्माण कराना, जागरूक कराना, हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, इसमें हम लोग आने जाने का भय देते हैं, निःशुल्क स्टॉल आवंटित कराते हैं, तो सोसाइटी का गठन कराते हैं, ये भी निःशुल्क हम लोग दिलाई जाती है।
3: कार्यक्रम के अंत में माटी कला उत्पादों का प्रदर्शन कराया गया और प्रचार सामग्री वितरित की गई। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से बढ़कर 17,000 प्रतिमाएं किए जाने और कैशलेस सुविधा मिलने से क्षेत्रों में तैनात अनुदेशकों में खुशी की लहर है। अनुदेशकों का कहना है कि इस बढ़े हुए मानदेय और एरियर से उनके सपनों को उड़ान मिलेगी, क्योंकि पहले सीमित मानदेय के कारण घर का खर्च चलाना बेहद कठिन था, अब मानदेय बढ़ने से बड़ा संबल मिला है। जनपद हमीरपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया, जहां 160 जोड़ों ने विधि विधान के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ जीवन बिताने का प्रण लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखी जीवन की मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अत्यंत कमजोर गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो सामरिक समरसता को सुदृढ़ करती है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

और अब प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। प्रार्थना की उपयोगिता के विषय में मेरे मन में शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रार्थना में आप अशुद्ध विचार से बच जाते हैं। ये कोई कम उपयोगिता नहीं, लेकिन ये तो पहली सीढ़ी है। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना करते समय हम उसके अर्थ में ही लीन रहें। जब हम प्रार्थनामय हो जाते हैं तो अर्थ का भान नहीं रहता। शुद्धतम स्थिति में अर्थ के परे पहुंच जाते हैं। उस दशा में भान मात्र ईश्वर का रहता है। भाषा बाधा रूप बन जाती है। मैं इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। प्रार्थना का हेतु तल्लीन होना है। सामाजिक प्रार्थना का हेतु समाज के रूप में तल्लीन होना है। व्यक्ति की समाज में डूब जाना है। व्यक्ति समाज में और समाज ईश्वर में लीन हो जाता है। ओम के उच्चारण में अथवा राम नाम में कौन सा अर्थ है? जो उसमें है वही प्रार्थना के श्लोकों आदि में है। मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं कि जो ये समझकर प्रतिदिन प्रार्थना का उच्चारण करता है वो अंत में परम शांति पाता है। जो समाज को चाहता है उसे सामाजिक कार्य में यानी सामाजिक प्रार्थना में अरुचि होनी ही नहीं चाहिए। जो ईश्वरमय बन जाता है वो तो समूचे संसार को ईश्वरमय देखता है। कहना होगा कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सामाजिक कार्य में सामाजिक प्रार्थना पहली सीढ़ी है। हबशियों से लेकर यूरोप के ईसाइयों, अरब के मुसलमानों और भारतवर्ष के हिंदुओं तक कोई प्रार्थना के बिना अपना काम चला नहीं पाए। गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर जमींदोज हो जाएं तो समाज भी जमींदोज हो जाएगा। ईश्वर के निकट तो 24 घंटे स्वर्गीय गान होता ही रहता है। हम उसकी कल्पना भर कर सकते हैं। सामाजिक प्रार्थना उस गान में सम्मिलित होने का एक अल्प प्रयत्न है। जो उस गान में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए तो नित्यानंद है। प्रार्थना अंततः श्रद्धा का विषय है। इस श्रद्धा को टिकाने लायक रस उसमें उड़ेलने होंगे। आखिर इस भावना को लेकर समाज में बैठेंगे और तन्मय होंगे तो वही प्रार्थना हो जाएगी। फिर वो चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोला जाए। दुनिया में सामूहिक मूक प्रार्थना भी प्रचलित है। रोमन कैथोलिकों में भक्त लोग घंटों मूक भाव में बैठे रहते हैं और प्रार्थना में ध्यानग्रस्त रह सकते हैं। हमें तो जैसे भी बने शांति प्राप्त करनी है। कई वर्षों से शुद्ध हेतु पूर्वक प्रार्थना से चिपटे रहे हैं, इसलिए हमें किसी दिन सच्ची कुंजी मिल ही जाएगी। इस बीच लोग आने लगे हैं, इससे संतुष्ट रहना। कुछ वस्तुओं का उपाय केवल काल है। हम जितना खोदते हैं उतना बिगड़ता है और धीरज से बाट जोहते हैं तो उपाय मिल जाता है। मुझे ईश्वर का स्मरण प्रतिक्षण रहता है। इसका अर्थ ये है, जागते हुए ऐसा कोई समय नहीं कि जब मुझे ये भान न हो कि ईश्वर मुझ में है और सब देखता है। ये भान बुद्धि को है, अभ्यास से हुआ है, हृदय को है। सो नहीं कहता क्योंकि मैं अपने को भयमुक्त नहीं मानता। सर्पादि का भय तो है ही। मृत्यु को मित्र समझते हुए भी देखता हूं कि दिल की गहराई में जीने की इच्छा भी रही है। लगता है जीना प्रिय है। इसी के साथ मृत्यु से भेंटने की तैयारी भी लगती है। ऐसी विचित्र भावना है। इस निर्बलता के कारण मैं ये नहीं कह सकता कि हृदय में ईश्वर का वास हुआ है। ये दूसरी बात है कि बुद्धि कबूल करती है कि वो हृदय में रहता है। जिसे ये अनुभव जन्य ज्ञान है कि ईश्वर हृदय में रहता है, उसे देह के विषय में अत्यधिक अमूर्छा होगी।

देख सकता हूं कि मैं इस स्थिति तक पहुंचा नहीं हूं। तिस पर भी बुद्धि ने जिसे स्वीकार किया है वो चीज इतनी मजबूत है कि वो हृदय में उतर रही है, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये थे प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। और अब सुनते हैं डीवी पलुस्कर के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

श्रोताओं, गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रार्थना की उपयोगिता पर गांधी जी के विचार। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशगान।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर शशि तिवारी के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शशि तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय में हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत हमने सोनू निगम के स्वर में फिल्म गरम मसाला से लिया है। गीत को लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म राज रिबूट में। इस गीत को लिखा था रश्मि विराग ने और संगीत था जीत का।

गांगुली का। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। आइए अब सुनते हैं शान और कैलाश खेर के स्वर में फिल्म फना का ये गीत। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर को फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में। जयदीप साहनी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। आइए अब सुनते हैं जावेद अली को फिल्म गजनी में। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और इसे संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आतिफ असलम के स्वर में फिल्म रेस से। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करने जा रही हैं राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना का राग तोड़ी में ख्याल गायन। अब आप प्रस्तुत करने जा रही हैं राग दीन तोड़ी।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी कलाकार बेगम परवीन द्वारा राग दीन तोड़ी में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में, और आज का ये अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके शब्द और उनकी भावनाएं समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, यारी है ईमान मेरा और दिलबर मेरे कब तक मुझे, जैसे अमर गीतों के पीछे वह कौन सी कलम थी जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया? वह कौन सा कवि था जिसने देशभक्ति, दोस्ती, प्रेम और जीवन के हर रंग को इतनी सहजता से शब्दों में पिरो दिया कि हर पीढ़ी उन्हें आज अपना मानने लगी? वह शख्स केवल गीत नहीं लिखता था, बल्कि भावनाओं को सुरों में ढाल देता था। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन कभी उम्मीद का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। शायद इसी कारण उनके गीतों में दर्द भी था, उम्मीद भी थी, प्रेम भी और जीवन का उत्सव भी। आज हम बात कर रहे हैं श्रोताओं हिंदी सिनेमा के महान गीतकार गुलशन बावरा की, जिनका वास्तविक नाम था गुलशन कुमार मेहता। गुलशन बावरा का जन्म 12 अप्रैल 1937 को तत्काल

अभिवाजित भारत के शेखुपुरा जो कि अब पाकिस्तान में है वहां हुआ था। बचपन सामान्य था लेकिन 1947 के भारत विभाजन ने उनकी जिंदगी बदल दी। सांप्रदायिक हिंसा में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। इसके बाद वे अपने बड़े भाई के साथ भारत आ गए और कठिन परिस्थितियों में जीवन की नई शुरुआत की। गुलशन कुमार मेहता अपने गीतों और सपनों में इतने डूबे रहते थे कि उनके मित्र उन्हें मजाक में बावरा कहने लगे और धीरे धीरे यही नाम उनकी पहचान बन गया। फिल्मी दुनिया ने उन्हें गुलशन बावरा के नाम से अपना लिया। श्रोताओं, मुंबई पहुंचकर उन्होंने कई संगीतकारों और निर्माताओं से मुलाकात की। शुरुआती दौर आसान बिल्कुल नहीं था, कई बार उनके हाथ निराशा भी लगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें फिल्मों में गीत लिखने का अवसर मिला और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। 1960 और 1970 के दशक में गुलशन बावरा हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शामिल हो गए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे हर परिस्थिति के अनुसार गीत लिख सकते थे, चाहे देशभक्ति हो, प्रेम हो, दोस्ती हो, रोमांस हो, दर्शन हो या जीवन का उत्सव। हर विषय पर उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे।

और श्रोताओं, कुछ विशेष कारणों के कारण आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। मिलेंगे कल एक नए कलाकार के साथ इसी समय और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: will also be unveiled by the Honorable President. Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
1: Mananiya Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण

0: जीवन शैल कौशल और भारत की बुराई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल नवाचार इस क्षेत्र में निरंतर योगदान पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का ताम्रपत्र शॉल प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास विपणन स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products.

0: people are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित हैं। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
0: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom

आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, Honorable Minister of Textiles, Honorable Minister of State for Textiles and External Affairs, distinguished awardees, representatives of state governments, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का।
2: Sector

0: प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल।
2: आपको बता दे,
0: repositioned as a professionally curated year round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale.

0: वीव द फ्यूचर के तहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिजाइन टूल्स, उनके द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल मोटिव्स को रीइमेजिन करने की चेष्टा और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइन्स, वाइल डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. QR बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, मैं आप सभी को अपना सिंसियर एप्रिसिएशन देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. I once again welcome the Honorable President, Madam, and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
1: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. I request the Honorable Minister, Shri Giriraj Singh, to kindly felicitate the Honorable President.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के इस समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
1: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
2: माननीय राष्ट्रपति
1: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी. मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर.

0: हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी, आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी। हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये ज्वाइंट अवार्ड है। और इसी ज्वाइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक ज्वाइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी ज्वाइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम। हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sadi, Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar

0: कानी शॉल एंड श्री कमल गौड ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द महेश्वरी साड़ी, श्री अभिनव वशाक ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द खादी मुस्लिन जामदानी साड़ी, श्री प्रफुल्ल कुमार साहू ऑफ उड़ीसा फॉर द जगत सिंहपुर साड़ी, श्री बरीगा राम ऑफ राजस्थान ऑफ यंग वीवर फॉर द पट्टू साड़ी, एंड श्री वनकर केशा भाई फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर दी तंगलिया दुपट्टा, एंड दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज कन्फरिंग दी वेरियस अवार्ड्स टू दी अवार्डीज ऑन दी नेशनल हैंडलूम डे 2025, एंड शी इज कन्फरिंग दी नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स 2025।
1: मार्केटिंग ट्रेनिंग से ही अगले विजेता हैं तमिलनाडु से मेसर्स 31 कोविलवाड़ी हथकरघा बुनकर सहकारी समिति। और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन, विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Janarani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi.
1: And
0: we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
1: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा, आपकी सादगी, संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905, when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, pichle barsh Rashtriya Hast Shilp Puraskar Samaroh के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। द ट्रू क्रेडिट फॉर द एंड्यूरिंग लिगेसी एंड ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस बिलोंग फर्स्ट टू आवर जेनरेशन ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary of Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards, and the National Handloom Awards. For your craftsmanship, innovation and dedication, you continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. अंततः आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हमारे बुनकरों को सम्मान पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर हम लोगों के देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम, श्रीमती

0: श्री एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12 में हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Award 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh. आखिर क्यों आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रशंसा जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000 और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है।

उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IISTE में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IISTE से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम, 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिन

0: जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी आईआईटी दिल्ली से एमओयू किया है, केवल एमओयू नहीं किया है, अभी 100 विभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, विभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिव सागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 पीपीएम पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 पीपीएम पर जाएंगे पर मिनट, 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आप बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: मेरा लक्ष्य है पचलखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: देखिए मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम हो। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार डिजाइनर देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हजारों वर्ष

से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षण भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजि आसीअछि नुआ जुगान्तर गांधी कहिछन्ति बुली बारबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है। इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक है, तो यहीं पे तो शौक है। हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजन, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हुए। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के

0: बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हाथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं, एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम

0: से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसआर खान अपने साथ ही कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोता भी सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण। कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नीरजा से ये गीत, जिसमें अपनी आवाज दी है शेखर रज रावजानी ने। और इस गाने में संगीत निर्देशन है विशाल खुराना का और गीतकार है प्रशून जोशी।

श्रोता समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मर्डर 2 से हर्षित सक्सेना की आवाज में। संगीत निर्देशन है हर्षित सक्सेना का ही और इस गीत के गीतकार हैं सईद कादरी। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं ये कार्यक्रम का ये अगला गीत।

और इस गाने के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत बस अब यहीं तक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस

0: गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज के अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने।

0: और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए। आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
1: नाना जी, पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
3: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
1: अच्छा,
3: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
1: मामा जी, मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
4: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा,
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है।

0: पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को। तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर श्रोता सुनेंगे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा

0: दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has said the handloom sector serves not only as a source of livelihood but also as a powerful instrument of inclusive development. Addressing the program on the occasion of the 12th National Handloom Day in New Delhi today, the President said, for thousands of years, handloom has been an integral part of India's cultural and civilizational journey.
2: Hajaron barse hathkarta Bharat ke prakruti poshak sabhyata ki vikas yatra ka abhinna hissa raha hai. Isme hamare rashtra ki asadharan vividhata dikhai deti hai. Hathkarda kshetra se rozgar, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: During the event, the President conferred the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. 4 commemorative postage stamps celebrating the country's rich and diverse handloom weaving traditions were also released on the occasion. Parliament has passed the Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Minister of MSME Jitin Ramaji moved the bill to further amend the MSME Development Act 2006. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. After passing the bill, presiding officer Dilip Saikia tried to run the house and appeal to the protesting members to allow the house to function. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju expressed concern over the opposition's conduct, saying that Union Home Minister Amit Shah always comes to Parliament during the session and remains present till late night. As the uproar continued, the presiding officer adjourned the house for the day to meet again at 11 a.m. on Monday. The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action.

0: Students protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up question hour amid opposition uproar. As the pandemonium continued, the Chairman adjourned the House for the day to meet again at 11 a.m. on Monday. Mizoram Chief Minister Lal Dohoma has said that Union Home Minister Amit Shah had assured that the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 would not have retrospective effect. Speaking to reporters after the meeting, Lal Dohoma said he had raised concerns over the proposed legislation with the Union Home Minister. He said Mr. Shah informed him that the bill would not apply retrospectively to past actions or transactions. Union Minister Sanjay Seth has said the Jharkhand government had not taken adequate steps to address the students' concerns despite the prolonged agitation. Talking to the media at Parliament premises, Mr. Seth said Rahul Gandhi responded to the issue through a video message only after the students' protest had continued for over 2 weeks. BJP MP Nishikant Dubey has demanded a transparent inquiry into the alleged irregularities in recruitment conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission. Speaking to reporters at Parliament premises, Mr. Dubey said many families had suffered financial hardship while seeking employment opportunities in the state. Leading international press freedom group has called on Pakistani authorities to withdraw Islamabad's new foreign media facilitation guidelines 2026. The group has described the rules as draconian and warned that it will censor coverage of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. It said Pakistani authorities have banned coverage of protests demanding electoral reform in POJK after international outlets reported on police brutality during clashes with peaceful demonstrators and suspended mobile and internet services. Fresh rainfall has revived flood concerns in parts of Odisha even as relief and restoration operations continue in the aftermath of the recent floods. Baleswar is facing renewed inundation in low-lying areas following a rise in the Jalakar River, while more districts remain under weather alerts. And with that, we end this news bulletin.
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रियासती बुनकरों और कारीगरों में संत कबीर रियासती सतह के हैंडलूम अवार्ड तकसीम किए। लखनऊ के लोकभवन में मुनक्किद एक तकरीब में उन्होंने चीफ मिनिस्टर हैंडलूम एंड पावरलूम इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम और झलकारी बाई कोरी हैंडलूम एंड पावरलूम स्कीम के मुस्तफिदीन को चेक भी तकसीम किए। वजीर आला ने कहा कि इसी दिन यानी 7 अगस्त 1905 को भारत की तहरीक आज़ादी ने एक नया रुख इख्तियार किया था। इस मौके पर खादी और गांव की सनत, सिल्क इंडस्ट्री, हैंडलूम और टेक्सटाइल के वजीर राकेश सचान, मेयर सुषमा खरकवाल और कई एमएलए इस तकरीब में मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर के जलालपुर, आलापुर और टांडा असेंबली हलकों में 706 करोड़ रुपए से ज्यादा के 194 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में कबूलियतनामे, सर्टिफिकेट और चेक भी तकसीम करेंगे। अम्बेडकर नगर के रामनगर तरक्याती ब्लॉक में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर और इलाकाई एमएलएज भी मौजूद रहेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुनक्किद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान खवातीन की हिफाजत, अमन अमान, कांवड़ यात्रा, सैलाब की सूरत हाल, आने वाले त्योहारों की तैयारियों, खादों की दस्तियाबी और स्कूली गाड़ियों के हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया और जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी और उन्नाव सहित बाढ़ प्रभावित 8 जनपदों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए इन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी तत्परता से जारी रहें और कहीं भी सहायता में कोई कमी ना रहे।

0: है। इससे पहले एक अन्य उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से विवेक।
1: मरकजी काबीना ने कल 23,731 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात के साथ नेशनल रीसाइकिल बायो एनर्जी स्कीम गोवर्धन को मंजूरी दी। काबीना की मीटिंग के बाद इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम मुल्क के साफ तवानाई के सफर में एक अहम संगे मील है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद बड़े पैमाने पर निजी सरमायाकारी को रागिब करना और रोजगार पैदा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये स्कीम कंप्रेस्ड बायोगैस को फरोग देगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवर्धन स्कीम को मरकजी काबीना की मंजूरी खुद इन्हिसार भारत साफ तवानाई और देही खुशहाली की तरफ एक तारीखी कदम है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल खानाबदोश बिरादरी की तरफ से खानाबदोश तरक्याती बोर्ड की तश्कील के लिए मुनक्किद करदा तशक्कुर के प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में मुल्क को दिया था अब समाज के आखिरी फर्द तक पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगने वाली अलमनाक आतशजदगी को लेकर सख्त मौकफ इख्तियार किया है। अदालत ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है और उसके वाइस चेयरमैन को जाती तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी है। उसने वाकये की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मुहरबंद रिपोर्ट भी तलब की है। केस सिर्फ एक हादसे का नहीं बल्कि अदालती अहकाम की मुबैना खिलाफ वर्जी का भी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने पहले हिदायत दी थी कि रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों और इमारतों के गलत इस्तेमाल की निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी इन हिदायत पर सही तरीके से अमल करने में नाकाम रही। अब अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से कई नदियां तिगयानी पर हैं। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी कल खतरे के निशान को पार कर गईं। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से अमरोहा में भी गंगा नदी तिगयानी पर है। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से अमरोहा में तिगरी गंगा का पानी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से घाटों में पानी भर गया है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने आज से 9 अगस्त तक मशरकी उत्तर प्रदेश में कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। अब समय है हमारी बहनों के अपने कार्यक्रम घर संसार का।

कार्यक्रम घर संसार की सभी श्रोता बहनों को उनकी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समम त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रपाह। माता के समान कोई छाया नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है और माता के समान जीवन का कोई दूसरा दाता नहीं है। बहनों, ये बात हम सभी बखूबी समझते हैं कि दुनिया में माँ जैसा कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। एक माँ अपनी संतान का गर्भधारण से लेकर आजीवन रक्षा कवच की तरह होती है। छोटी से छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों तक को पूरा करने की हर संभव कोशिश करती है। जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसकी माँ का स्पर्श उसके लिए वो पहला स्पर्श होता है जिसे वो महसूस कर पाता है। माँ की गोद और आंचल में शिशु की दुनिया होती है। प्रकृति की रचना ही कुछ ऐसी है कि शिशु का पोषण उसकी माँ के दूध में समाहित है। खासकर जन्म के बाद शुरुआती दिनों में निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता

को मजबूती देता है और कई प्रकार के संक्रमण से बच्चे को बचाता भी है। माँ के दूध में विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और पानी सही मात्रा में होते हैं, जो पहले 6 महीनों तक शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त हैं। माँ का दूध बहुत हल्का होता है, शिशु का नाजुक पेट इसे आसानी से पचा सकता है। पेट में दर्द, गैस या दस्त जैसी समस्याएं भी माँ के दूध के सेवन से शिशु को कम ही होती हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि माँ का दूध शिशु का सर्वोत्तम आहार होता है। बहनों, जिस तरह बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया होती है, ठीक वैसे ही माँ के लिए भी उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होता है।

बहनों, जिंदगी एक पहेली जैसी होती है। ये हमें कब हंसाएगी या कब रुलाएगी, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसे हमें जीना होता है। चलिए बहनों, अब सुनवाते हैं आपको कवयित्री भावना मेहरा का ये काव्य पाठ जिंदगी।

0: द कारवां।
1: मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ अपनी कुछ गजलें कि जिंदगी का कारवां है ये कभी थमता नहीं, जिंदगी का कारवां है ये कभी थमता नहीं, वक्त से पहले कभी भी सूर्य ये ढलता नहीं। जिंदगी का कारवां है ये कभी थमता नहीं, वक्त से पहले कभी भी सूर्य ये ढलता नहीं। और आज अगर हारे हैं हम तो कल मिलेगी जीत भी। तो किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है कि आज अगर हारे हैं हम तो कल मिलेगी जीत भी। बस हकीकत है यही वक्त ये रुकता नहीं, बस हकीकत है यही वक्त ये रुकता नहीं, जिंदगी का कारवां है ये कभी थमता नहीं। और हार कर तुम यूं न बैठो फिर उठो आगे बढ़ो, हार कर तुम यूं न बैठो फिर उठो आगे बढ़ो, पर्वतों को देखकर सरिता का जल डरता नहीं, पर्वतों को देखकर सरिता का जल डरता नहीं, जिंदगी का कारवां है ये कभी थमता नहीं। और भी अवसर मिलेंगे, जिंदगी एक दौड़ है। एक अवसर अगर हाथ से निकल जाए तो क्या हुआ, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो और भी अवसर मिलेंगे, जिंदगी एक दौड़ है, जोश से भरकर जो दौड़े वह कभी थकता नहीं, जोश से भरकर जो ये कभी थमता नहीं। भावना की ज्योत में तुम तेल सा साहस भरो, भावना की ज्योत में तुम तेल सा साहस भरो, दीप में बाती न हो तो वह कभी जलता नहीं, दीप में बाती न हो तो वह कभी जलता नहीं, वे कभी थमता नहीं, और वक्त से पहले कभी भी सूर्य ये ढलता नहीं। अब अगली एक गजल और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि झूठ और तुम गमों की किताब हो शायद, तुम गमों की किताब हो शायद, जिसको पढ़ना हमें आता, और मिल रही है सजा मोहब्बत की, मिल रही मोहब्बत की पर बिखरना हमें नहीं आता, पर बिखरना हमें नहीं आता, चुप भी रहना हमें नहीं आता, और सच नहीं बोलते कभी तुम जो, सच नहीं बोलते कभी तुम जो, झूठ सुनना हमें नहीं आता, झूठ सुनना हमें नहीं आता, चुप भी रहना हमें नहीं आता। और ये नमी आंख में जो दिखती है, ये नमी आंख में जो दिखती है, इसको पीना हमें नहीं आता, इसको पीना हमें नहीं आता, चुप भी रहना हमें नहीं आता। और देखें कि तुम चिरागों की बात करते हो, तुम चिरागों की बात करते हो, इनसा जलना हमें नहीं आता, इनसा जलना हमें नहीं आता, चुप भी रहना हमें नहीं आता। और हम तो कांटों के बीच रहते हैं, हम तो कांटों के बीच रहते हैं, फिर भी चुभना हमें नहीं आता, फिर भी चुभना हमें नहीं आता, झूठ कहना हमें नहीं आता, और चुप भी रहना हमें नहीं आता। और अब आपके सामने पढ़ रही हूँ, सुनो इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं, सुनो इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं, हमें है प्यार जीवन से यही इकरार करते हैं, सुनो इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं, हमें है प्यार जीवन से यही इकरार करते हैं। और हमें जीवन मिला इंसान का एक खास मकसद से, हमें जीवन मिला इंसान का एक खास मकसद से, तभी तो इन क्षणों को हम नहीं बेकार करते हैं, तभी तो इन क्षणों को हम नहीं बेकार करते हैं, सुनो इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं। कलम के ही सिपाही हैं, कलम को पूजते हैं हम, कलम के ही सिपाही हैं, कलम को पूजते हैं हम कि माँ वाणी तुम्हारा हर घड़ी आभार करते हैं, कि माँ वाणी तुम्हारा हर घड़ी आभार कर...

करते हैं। सुनो, इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं। और शेर देखें कि नहीं बेची हृदय की वेदना हमने तो मंचों पर, नहीं बेची हृदय की वेदना हमने तो मंचों पर, अजी हम भावनाओं का नहीं व्यापार करते हैं, अजी हम भावनाओं का नहीं व्यापार करते हैं। सुनो, इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं। और विरासत में नहीं मिलती सभी को भाव की दौलत, विरासत में नहीं मिलती सभी को भाव की दौलत, तभी हम भावना का हर जगह संचार करते हैं, तभी हम भावना का हर जगह संचार करते हैं। सुनो, इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं, हमें है प्यार जीवन से, यही इकरार करते हैं।

0: तभी हम भावना का हर जगह संचार करते हैं। सुनो, इस जिंदगी से हम बहुत ही प्यार करते हैं, हमें है प्यार जीवन से, यही इकरार करते हैं। और अब अंत में चलते चलते अपनी मन की एक गजल आप सभी के सामने पढ़ रही हूं कि हर घड़ी खुद पर हमें विश्वास होना चाहिए, हर घड़ी खुद पर हमें विश्वास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए, हर घड़ी खुद पर हमें विश्वास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए। और दिल किसी का ना दुखे, दिल किसी का ना दुखे, हमको सदा यह याद हो, उन्नति का ही सदा प्रयास होना चाहिए, कि उन्नति का ही सदा प्रयास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए। और शेर देखें कि ये न हो अपने ही दुख पर आंख से आंसू गिरे, ये न हो अपने ही दुख पर आंख से आंसू गिरे, दूसरे के दुख का भी एहसास होना चाहिए, दूसरे के दुख का भी एहसास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए। सुख और दुख जिंदगी में चलते हैं हमारे साथ, तो क्यों दुखों में लीन हो ये जिंदगी है दोस्तों, क्यों दुखों में लीन हो ये जिंदगी है दोस्तों, कुछ खुशी कुछ हास और परिहास होना चाहिए, कुछ खुशी कुछ हास और परिहास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए। और भावना अच्छी नहीं तो क्या करोगे तुम भला, भावना अच्छी नहीं तो क्या करोगे तुम भला, ये गलत ये है सही आभास होना चाहिए, ये गलत ये है सही आभास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए, हर घड़ी खुद पर हमें विश्वास होना चाहिए और मकसद भी हमारा खास होना चाहिए।
1: बहनों, अभी आपने सुना काव्य पाठ जिंदगी का कारवां, कवयित्री थी भावना मेहरा। बहनों, अब समय है एक अंतराल का, अंतराल के उस पार होगी आपसे मुलाकात कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मेरी पहचान में।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। जी हाँ बहनों, अगर हौसले बुलंद हो तो अपनी अलग पहचान बनाना कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। इस बात को सच कर दिखलाया है भारत की प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने, जो बिना हाथों के ही अपने पैरों से तीर चलाती हैं। 10 जनवरी सन 2007 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जन्मी शीतल देवी को जन्म से ही फोकोमेलिया नामक एक दुर्लभ स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके हाथ विकसित नहीं हो सके। शीतल देवी ने किश्तवाड़ में ही प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। बहनों, शीतल देवी की जिंदगी में एक खास मोड़ आया स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस होने के बाद। जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब ट्रीटमेंट के लिए बेंगलुरु गई थी, जहां उनकी मुलाकात प्रीति नामक महिला से हुई।

जिन्होंने तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से शीतल देवी का परिचय करवाया। स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज की तलाश में शीतल देवी ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिला लिया। इस तरह शारीरिक कठिनाइयों और चुनौतियों को सहते हुए भारत की पहली ऐसी धनुर्धर तैयार हो रही थी जिसके हाथ तो नहीं थे लेकिन दृढ़ संकल्प चट्टानों सा मजबूत था। पैरों से धनुष को पकड़कर और कंधे व ठोड़ी के सहारे निशाना लगाने की अनोखी शैली उन्होंने अपनाई। शीतल देवी ने 2023 में चीन में हुए एशियन गेम्स के एक ही सीजन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब जीता। 2023 में ओपन कैटेगरी में वर्ल्ड की नंबर 1 महिला कंपाउंड पैरा आर्चर भी वो रहीं। सन 2023 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और सन 2024 के पेरिस पैरालंपिक की पदक विजेता भी बनी। सन 2025 को जेद्दा में एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की सक्षम जूनियर टीम में शीतल देवी ने जगह प्राप्त की। सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 भी नामित किया गया। बहनों, इरादे अगर मजबूत हों तो असंभावनाओं को संभावना में बदलना नामुमकिन नहीं। शीतल देवी इस बात की मिसाल हैं। आइए सुनते हैं अब ये उत्साहवर्धक गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बेनो, अब है बारी फैशन ब्यूटी सेगमेंट की। चेहरे की स्किन केयर में फेस पैक का नाम तो जरूर लिया जाता है। त्वचा को साफ रखने, पोषण देने और हाइड्रेटेड रखने में फेस पैक का उपयोग काफी कारगर है। बेनो, सबसे पहले बात करते हैं फेस पैक से त्वचा को होने वाले फायदों की, जिसमें डीप क्लींजिंग सबसे पहले आती है। दूसरा फायदा फेस पैक से जो मिलता है वो है हाइड्रेशन। त्वचा में मॉइस्चराइजिंग लेवल बढ़ाने वाली कई

तत्व फेस पैक में होते हैं। बहनों, कुछ फेस पैक तो खासतौर पर त्वचा में कसावट लाने के लिए तैयार किए जाते हैं, जो ढीली त्वचा में टाइटनिंग के साथ फाइन लाइंस और झुर्रियां कम करने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फेस पैक त्वचा के रंग से लेकर टेक्सचर तक की देखभाल करते हैं। यूं तो बहनों, आजकल बाजार में महंगे से महंगे ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन घर में आसानी से मिलने वाली नेचुरल चीज़ों से भी फेस पैक तैयार किए जा सकते हैं। बेसन और दही वाला पैक काफ़ी पुराना लेकिन असरदार तरीका है चेहरे की रंगत को निखारने और त्वचा को मुलायम बनाने का। एलोवेरा का पौधा तो बहनों हम सभी के घरों में होता है। इसके जेल को स्किन पर लगाने से गहरी नमी मिलती है और ठंडक भी। जब मुहासों और स्किन इन्फेक्शन से आप परेशान हो तो नीम की पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और चेहरे पर इसे लगाएं। त्वचा साफ और फ्रेश हो जाएगी क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। बहनों, इस तरह के प्राकृतिक घरेलू उपायों से तैयार फेस पैक आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। और बात सुंदरता की हो तो तारीफ में गीत संगीत तो होना ही चाहिए।

बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि मानसून हमें गर्मी से राहत दिलवाता है, लेकिन इस दौरान सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से भी हमें दो चार होना पड़ता है। और तो और बहनों, इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। ऐसे में औषधीय गुणों से भरपूर काली मिर्च लहसुन वाली रसम, जो दक्षिण भारत में मिलागू पोंडू रसम के नाम से प्रसिद्ध है, इसका सेवन स्वाद और सेहत दोनों का एक अनोखा समन्वय।

साबित हो सकता है। बहनों, काली मिर्च और लहसुन वाली रसम को बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो इस प्रकार है। कुटा हुआ लहसुन 5 से 6 कलियां, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े कटे हुए टमाटर, तड़का लगाने के लिए सरसों के बीज, 6 से 7 करी पत्ते और 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बहनों, आप चाहें तो इसमें इमली के रस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन इमली का रस खांसी जुकाम होने पर अवॉइड करना ही ठीक रहता है। बहनों, मिलागू पुंडू रसम को बनाने की विधि बहुत आसान है। सबसे पहले कटे हुए टमाटर को नमक हल्दी के साथ उबालें, इसमें 2 कप पानी डालें और झाग आने तक पकाएं। फिर इसमें सरसों के दाने, हींग, लहसुन और करी पत्ते डालकर तड़का लगाएं और गर्मा गर्म रसम का जायका लें। और इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर को इजाज़त। नमस्कार।

हमारी बहनें भी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संवेद स्वर में चयनित कुछ गजलें। प्रस्तुत है पहली गजल जिसके बोल हैं सूरज ने किरणें भेजी।

श्रोता समय सुन रहे हैं संवेद स्वर में कुछ चयनित गजलें और कार्यक्रम है सुगम संगीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये अगली गजल जिसके बोल हैं इतने दिन कैसे रहे।

और इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: is continues along the coastal areas. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: In sports, Indian Grandmaster Pragyananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javohir Sindarov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. In badminton, Indian shuttlers Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha have stormed into the women's singles semi-finals of the Korea Masters in Asan today. Rakshita defeated compatriot Tanvi Sharma in the quarterfinals. She will now face fellow Indian Ashmita Chaliha in the semi-finals. Ashmita advanced to the semi-finals after stunning top seed Hina Akechi of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री

0: रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम तो है ये के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्र हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहल की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
3: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
4: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे

0: और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास

में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर अनिता सेन द्वारा ठुमरी गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार डॉक्टर अनीता सेन द्वारा ठुमरी गायन और कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से ये गीत, जिसमें संगीतकार हैं ओपी नैयर और गीतकार हैं मजरूह।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत श्रोता सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म परख से। संगीत निर्देशन है सलील चौधरी का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

श्रोता इस नगमे को सुन रहे थे फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था झूले में पवन के, माफ कीजिएगा, बैजू बावरा। संगीत निर्देशन था नौशाद का और इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने। श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता आप सुनेंगे फिल्म बंदनी से आशा भोसले की आवाज में। संगीत निर्देशन है एसजी वर्मन का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

कार्यक्रम का ये गीत श्रोता सुन रहे थे फिल्म बंदिनी से। कार्यक्रम की अगली पेशकश श्रोता सुनने जा रहे हैं फिल्म उमराव जान से शहीदा खान की आवाज में। संगीत निर्देशन है खय्याम का और इस गीत को हम सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म उमराव जान से।

0: और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1523 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता, आप सुनेंगे हमारा उर्दू का विशेष कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे मकाला, अबुल कलाम आजाद शख्सियत ओ खिदमत। मकाला निगार हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: आज़ाद तारीख़ हिंद की उन अज़ीम तरीन हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपनी तहरीर व तकरीर के ज़रिए कौम की क़यादत और फ़िक्री रहनुमाई का काम अंजाम दिया। आज़ाद हमाजहद शख्सियत के मालिक थे। वो एक मुदब्बिर, मुफक्किर, मुसलह, अदीब, ख़तीब, सहाफ़ी, सियासी रहनुमा, मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। इनका नाम हयुद्दीन अहमद और तखल्लुस आज़ाद था। तारीखी नाम फिरोज वक्त और लकब इमामुल हिंद था, लेकिन इनकी शोहरत अबुल कलाम आज़ाद से हुई। इनके वालिद खैरुद्दीन मक्का में इकामत पजीर थे और मुहद्दिस के ओहदे पर फाइज थे। इन्होंने खुद अपने बच्चों की तालीम तरबियत का काम अंजाम दिया। आज़ाद ने उलूम इस्लामी, अरबी, फ़ारसी और तुर्की अदब से वाकफियत पैदा की और फ़लसफ़ा, कीमिया, इल्म फलकियात, मंतिक, तिब की भी तालीम हासिल की। 15 बरस दरस निज़ामिया की तकमील के बाद तर्जुमे में महारत हासिल की। आज़ाद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शायरी से किया। इनकी पहली गज़ल 12 साल की उम्र में अरमगान फर्रुख बम्बई में शाई हुई। इसी साल इन्होंने तबाहत का काम भी शुरू किया। 1900 ईस्वी में इन्होंने अलमिसवा के नाम से एक हफ्तावार रिसाला जारी किया जिसमें लोगों की सवाने हयात कलमबंद की और साइंसी इल्मी मजामीन भी लिखे, लेकिन ये रिसाला ज्यादा देर तक जिंदा न रह सका। 1902 ईस्वी में मौलाना आज़ाद ने मशहूर रिसाला लिसानुस्सिद्क जारी किया जिसमें मुसलमानों की समाजी इसलाह के लिए इल्मी और अदबी मजामीन शाये होते थे। इनके ख्यालात ने हिंदुस्तानी मुआशरे पर खातिरख्वाह असर डाला। सहाफत के साथ साथ आज़ाद ने तामीरी कामों में भी हिस्सा लिया। इन्होंने अल इस्लाह के नाम से एक अंजुमन कायम की जिसका मकसद लोगों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करना था। आज़ाद ने अपनी तहरीर व तकरीर के जरिए कौम की हौसला अफजाई की और उनमें इल्मी अदबी मजाक पैदा किया। इसी जमाने में आज़ाद की मुलाकात अल्लामा शिबली नुमानी से हुई। वो मौलाना आज़ाद की तहरीरों से बहुत मुतासिर हुए, लिहाजा इनकी दरख्वास्त पर मौलाना ने नदवतुल उलमा के रिसाले अन्नदवा की इदारत कबूल कर ली। अन्नदवा की इदारत के बाद मौलाना आज़ाद अमृतसर से शाये होने वाले रिसाले वकील के एडिटर बने। इनकी कोशिशों से ये रिसाला मकबूल व मारूफ हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के नामी अखबार दारुस्सल्तनत की इदारत की। कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी था। 1857 ईस्वी की नाकाम जंग आज़ादी के बाद दिल्ली की मरकजी हैसियत ख़त्म कर दी गई और अंग्रेज़ हुकूमत ने कलकत्ता को अपना मरकज़ करार दिया। ये ज़माना मौलाना की तहकीक, तजस्सुस और तरद्दुद का ज़माना था। इसी दौर में वो सैयद अहमद ख़ान के आली अफकार व नज़रियात से बहुत मुतासिर हुए और ख़ुसूसन सैयद के नज़रिए अक़लियत और इज्तिहादी फ़िक्र का बहुत असर कबूल किया। आज़ाद ने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए सैयद के मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन आज़ाद का सैयद से इख्तलाफ सियासी मैदान में था। मौलाना आज़ाद ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। उनके पेश नज़र वो हिंदुस्तान था जो अंग्रेज साम्राज्य से आज़ाद था। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और वतनी कौमियत की तहरीक पैदा की। अपने ख्यालात को अवाम तक पहुंचाने और उनमें सियासी शऊर पैदा करने के लिए उन्हें एक अच्छे अखबार की जरूरत महसूस हुई। लिहाजा आज़ाद ने इन्हीं मकासद के तहत 1912 ईस्वी में कलकत्ता से अल हिलाल हफ्त रोज़ा अखबार जारी किया। ये उर्दू का एक अहम सियासी, समाजी, मजहबी

0: नबी और मुआशरती जरीदा था जिसने मुसलमाना ने हिंद को बेदार किया, उनमें आज़ादी और हुब्बुल वतन की सूर फूंकी। अपने इन इनकलाबी कारनामों के सबब ये रिसाला दो मरतबा बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद ने इन्हीं मकासद के तहत नवंबर 1915 ईस्वी में अलबलाग़ शुरू किया, जो मार्च 1916 ईस्वी से मसदूद हो गया और मौलाना 1919 ईस्वी तक रांची में नज़रबंद रहे। इस जमाने में उन्होंने कुरान की तफसीर तर्जमानुल कुरान के नाम से लिखी और तस्करी के उनवान से अपने खानदान के हालात कलमबंद किए। इसके साथ ही उनकी सियासी जिद्दोजहद का सिलसिला भी जारी रहा। 18 जनवरी 1920 ईस्वी को मौलाना आज़ाद की गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। दोनों की सियासी नज़रियात और ख्यालात में बहुत कुछ यकसानियत थी। गालिबन यही वजह थी कि गांधी जी भी खिलाफत तहरीक के हामियों में शामिल हो गए। ये दौर तहरीक खिलाफत, तर्क मवालात, सेकुलर कौमियत और कांग्रेस की आला क्यादत का ज़माना था। 1932 ईस्वी में कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक दोबारा शुरू की। आज़ाद दिल्ली में नज़रबंद कर दिए गए, ये उनकी चौथी बार गिरफ्तारी थी। इसके बाद भी मौलाना आज़ाद की कौमी क़यादत का सिलसिला बरकरार रहा। इन्होंने मुस्लिम लीग की सख्त मुखालिफत की। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। जंग के दौरान एक बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि हिंदुस्तान इसमें शामिल हो या ना हो। आज़ाद ने गांधी जी से इख्तलाफ किया और ये कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो हिंदुस्तान को जमहूरी ताकतों से मिल जाना चाहिए। आज़ाद अपने तजुर्बे और मुशाहदे के सबब तारीख के बाज़ हकाइक से इनकार और बाज़ का इकरार करते रहे। गांधी जी ने हुकूमत इंग्लिशिया को मुतासर करने के लिए तर्क मवालात का मंसूबा बनाया, अदम तआवुन की तहरीक शुरू की, तो मौलाना आज़ाद ने गांधी जी के इस तरीक़ेकार की तायीद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने न सिर्फ इस तहरीक के लोगों को तैयार किया बल्कि इस मैदान में अमली काम भी किया। तहरीक के मकसद में शामिल था कि तलबा को सरकारी मदारिस से निकालकर नए कौमी मदारिस में लाया जाए। आज़ाद कौमी तालीम के हामी थे लेकिन वो मगरबी तालीम को मुल्क के लिए मुज़र समझते थे, लिहाजा इन्होंने कलकत्ता की जामा मस्जिद में एक मदरसा कायम किया। आज़ाद 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक तकरीबन 7 साल कांग्रेस के सदर रहे। इस दौरान इन्होंने कैदोबंद की सौतें भी बर्दाश्त की और अगस्त 1943 ईस्वी से जून 1945 ईस्वी के दौरान पहले किला अहमदनगर और फिर नानकोड़ा जेल में असीर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त सदर यार जंग हैदराबाद के नाम खत लिखे, जो बाद में गुबार खातिर के नाम से शाये हुए। मौलाना आज़ाद अपनी इन पेशवा खिदमात के सिले में हुजूर आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद में वजारत तालीम के मनसब पर फाइज हुए। दस्तूर साज असम्बली में मसरूफियत रही, अलावाजी पार्लियामेंट में नायब वजीर आजम के ओहदे पर मुतकर्रर हुआ। अबुल कलाम आज़ाद ने ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा 15 फरवरी 1958 ईस्वी में आखिरी तकरीर की, जिसमें उन्होंने हिंदी के मुल्क की सरकारी जबान बन जाने और उर्दू को दूसरी जबान बन जाने का फैसला कबूल किया। 23 फरवरी 1958 ईस्वी को हिंदुस्तान का ये मायानाज अदीब सुपुर्द खाक हो गया। मुख्तसर ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बरगजीदा शख्सियत थे और इनके फिक्र अमल ने अपने अहद की तरक्की और तामीर में बड़ा हिस्सा लिया।
1: श्रोता भी सुन रहे थे मकाला अबुल कलाम आज़ाद शख्सियत ओ खिदमत, मकाला निगार थी शगुफ्ता यास्मीन। इस समय आप सुन रहे हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। प्रस्तुत है कलाम शायर मोहम्मद फराज मुजीब द्वारा प्रस्तुत खूबसूरत कलाम।
2: एक गजल का मतलब और कुछ शेर पेशे खिदमत है, समाप्त कीजिए।

0: मोहब्बत है हमें घर के अंधेरों से, फराज इतनी मोहब्बत है मुझे घर के अंधेरों से, हम अक्सर शाम को दीपक जलाना भूल जाते हैं।
1: एक गजल का मतलब और दो तीन शेर और समाप्त कर लें।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाम शायर मोहम्मद फराज मुजीब द्वारा गाई हुई कुछ खूबसूरत गजलें। इस समय आप सुन रहे हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आकाश।

0: वाणी के आगरा केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अफसाना रोशन चिराग और अफसाना निगार हैं महमूदा कुरेशी।
1: चिराग आज जब स्कूल से वापस आया तो काफी थका हुआ था और वो आते ही अपने कमरे में चला गया। बेटे को यूं निढाल देखकर माँ भी पानी का गिलास हाथ में लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। चिराग आज आप शूज बाहर उतारे बगैर ही कमरे में दाखिल हो गए, और ये क्या आपने चेंज भी नहीं किया, और ये आपकी ड्रेस इतनी गंदी कैसे हो गई, माँ ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। चिराग किसी भी बात का जवाब दिए बगैर माँ की गोदी में सर रखकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, माँ कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी क्लास टीचर बहुत गंदी हैं, वो मुझसे बहुत काम कराती हैं। आज उन्होंने हमसे पूरी क्लास साफ कराई और पूरी क्लास को हम सभी दोस्तों ने मिलकर डेकोरेट भी किया, और ऊपर दीवार पर जब मैं स्टार लगा रहा था तो मेरा पैर बेंच से फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सब दोस्त मेरे ऊपर हंसने लगे, और तो और सोनाली मैम भी हंस रही थी, माँ देखो मेरे कितनी चोट लगी है। अपनी चोट पर फूंक मारते हुए उफ नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल तो सोनाली मैम को गिफ्ट भी देना होगा जिसने मेरे कपड़े गंदे कराए और सबके सामने मेरा मजाक बनाया और कहा चिराग से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, और तो और पढ़ाई में वीक होने का ताना भी दिया। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गंदी है सोनाली मैम, और टीचर्स डे बनाया ही किसने है, क्यों मनाते हैं टीचर्स डे, जरूर इस दिन सोनाली मैम का बर्थडे होगा, गिफ्ट बटोरने के लिए बस कह दिया है टीचर्स डे है, चिराग ने मुंह बनाते हुए कहा। ना बोला ना ऐसे नहीं कहते अपनी मैम के बारे में, वो आपकी उस्ताद हैं, माँ ने डांटते हुए कहा। ये तो बहुत पहले से ही 5 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में योम असतजा यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, और बेटा 5 सितंबर को सोनाली मैम का बर्थडे नहीं है, 5 सितंबर को तो अजीम मुफक्किर दानिश्वर और अबकरी शख्सियत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योम पैदाइश को हम योम असतजा यानी टीचर्स डे की शक्ल में मनाते हैं, माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ हमारी जीके की बुक में तो टीचर्स डे 5 अक्टूबर को लिखा है, चिराग ने फौरन ही माँ के सामने एक सवाल पेश कर दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनाली मैम ख्वामहा ही कहती हैं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, माशाल्लाह तुम्हारा हाफजा बहुत तेज है, जो तुम्हें अपनी सारी किताबों के बारे में अच्छे से मालूमात हासिल है, और माँ ने बेटे के बालों को सहलाते हुए जीके की किताब की मुफस्सल हवाले के साथ वजाहत करते हुए कहा। हाँ हमारे मुल्क में तो योम असतजा 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, जबकि आलमी योम असतजा 5 अक्टूबर को मनाते हैं बेटा, जो 1994 से जारी है। यूनेस्को जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है उसने ही इस रस्म की ऐजाद की। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जो मुख्तलफ तारीखों में योम असतजा मनाया करते हैं, जिस तरह हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलफ कौमी और मजहबी त्यौहार मनाते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे मुल्कों में भी अपने कौमी और मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। मजीद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए माँ ने चिराग को हिदायत की, अब तुम पहले फ्रेश हो जाओ और ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, और हाँ कल तुम्हारे बोलने के लिए मैंने एक स्पीच भी तैयार की है, बस तुम एक दो बार पढ़ लेना तो तलफ्फुज की गलतियाँ भी निकल जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, कहते हुए माँ किचन की तरफ चली गई। चिराग ने भी नफी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ बहुत जोरों की भूख लगी है। चिराग स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों साथियों को टीचर्स के लिए लाए हुए ताहिफ को फखरिया तौर पर एक दूसरे को दिखाते हुए देख मुस्कुराता हुआ किसी को भी अपने गिफ्ट दिखाए बगैर ही बहुत खामोशी के साथ बैठकर सोनाली मैम का इंतजार करने लगा। तभी बैल बज गई और सभी बच्चे हाल में पहुंच गए। दूसरे ही लम्हा सोनाली मैम ने अपनी बात पेश करते हुए कहा, प्यारे बच्चों गौर करो, फिक्र करो, जुस्तजू करो, मुशाहिदा करो, आसमान की बुलंदियों और जमान की तहों से इस दुनिया के पोशीदा राजों और खजानों को ढूंढ निकालो और उन पर तहकीक करो यानी रिसर्च करो। तालिबिल इल्म जब इल्म हासिल करने निकलता है तो तालीम से उसका मकसद जहनी जिस्मानी और रूहानी नशोदोनुमाई करना होता है। इस मकसद को हासिल करने में तलबा को काबिल कदर असर

अस्तज़ा के इंतखाब करना होता है जो हुसूल तालीम का मकसद हल करने में उनकी मदद करें, उसके जहन को जिला बख्शें, उसको समझने का सही उसलूब सिखाएं, उसमें नजरी और तनकीदी निगाह कायम करें और तलबा को फिक्री इज्तिहाद के काबिल बनाएं। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, मैं पढ़ाता नहीं जगाता हूँ। और हुसूल मकसद को हल करने में अगर तालिबिल इल्म को सही उस्ताद मिल गया और उसने तालिबिल इल्म को सही राह पर डाल दिया तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह एक इंसान की कामयाबी में उसके असातज़ा का बहुत अहम किरदार होता है। सभी असातज़ा और तालिबिल इल्मों ने भी फिर एक बार तालियों से माहौल को गर्मा दिया। इसके साथ ही प्रिंसिपल मैम ने अख्तिताम का ऐलान कर दिया और सभी तलबा अपनी अपनी क्लासों में चले गए। क्लास में पहुंचकर सभी बच्चों ने सोनाली मैम को गिफ्ट दिए। जब चिराग ने सोनाली मैम की तरफ अपना गिफ्ट बढ़ाया तो सोनाली मैम ने उसे लेने से इनकार करते हुए कहा, सॉरी चिराग, तुम्हारा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती, पहले तुम पढ़ाई में अच्छे बनकर दिखाओ, तभी मुझे ये गिफ्ट लेने में फख्र महसूस होगा। सिर्फ नाम चिराग रख लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने हिस्से के चिराग खुद ही रोशन करने होते हैं। चिराग रोता हुआ क्लास से बाहर चला गया और आज 20 साल बाद अपने आंसू साफ करते हुए चिराग ने कहा, थैंक यू सोनाली मैडम, क्योंकि आज उसे 20 साल बाद टीचर्स डे पर खुद अपने ही स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है तो उसके जहन में सोनाली मैम के कहे वो सारे जुमले रक्स कर रहे हैं। आज जबकि वो अपने ही शहर में IAS ऑफिसर है तो खुद पर गुजरे सारे लम्हात रह रह कर याद आ रहे हैं और स्कूल पहुंचने की भी जल्दी है जैसे कि 20 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन साथ ही ये भी खदशा लाहक था कि अब पता नहीं सोनाली मैम कहाँ होंगी। खुद से ही बड़बड़ाते हुए चिराग ने कहा, स्कूल में दाखिल होते ही चिराग का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और जल्द ही प्रोग्राम की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जब IAS ऑफिसर मोहम्मद चिराग से प्रिंसिपल साहिबा ने अपने तलबा की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज पेश करने को कहा तो उसने बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, अजीजम, मेरे लिए निहायत इफ्तिखार का मकाम है कि आज मैं आपके सामने आपसे रूबरू हूँ। एक उस्ताद जिंदगी में क्या मानी रखता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दरअसल उस्ताद ही जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है और तालिबिल इल्म भी अपने असातज़ा से ये तवक्को रखता है, क्योंकि बचपन में असातज़ा ही तालिबिल इल्म के रोल मॉडल होते हैं। अगर असातज़ा का किरदार खुद मिसाली होता है तो जाहिर है तालिबिल इल्म में उन खूबियों का आना फितरी है। एक बज़हीन तालिबिल इल्म अपने असातज़ा की ही नकल मकानी करता है। उनके असातज़ा का पढ़ाने का अंदाज कैसा है या वो किस तरह से समझाते हैं कि वो हमेशा के लिए उनको ज़हन-नशीन हो जाता है। अक्सर तलबा को ये कहते हुए सुना जाता है कि मुझे फला टीचर की क्लास लेना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फला उस्ताद का समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। एक उस्ताद ही होता है जिसकी सिर्फ एक बात, एक अंदाज तालिबिल इल्म को वो फिक्री नजर बख्श सकती है जिससे तालिबिल इल्म की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो सही राह पर कामजन होता है। इसी स्कूल में मौजूद हमारी साइंस टीचर सोनाली मैम ने मुझे वही नजरिया बख्शा था जिसका नतीजा आप सबके सामने है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अपनी बात को मजीद तूल देते हुए चिराग ने कहा, एक और मिसाल देते हुए चिराग ने कहा, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो, जो हमें सुलाए नहीं बल्कि हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, क्योंकि ज्यादा सोना मौत की अलामत होगा। ये दो जुमले कि जो हमें सुलाए नहीं बल्कि हम में हरकत और हंगामा पैदा कर दे, ये हरकत और हंगामे शायद बहुत पहले सोनाली मैम ने मेरे अंदर पैदा कर दिए थे। इसके साथ ही अपनी बात खत्म करते हुए जय हिंद वहाँ मौजूद मेहमानान ने माहौल को फिर से गर्मा दिया। चिराग की बातें सुनकर मजमे में मौजूद व्हाइट साड़ी में मलबूस बहुत ही ज़ईफ उम्र खातून ने स्टेज पर आने का इशारा किया। माजी और हाल से मुस्तकबिल का चिराग रोशन करना चाहता है ताकि उसका तालिबिल इल्म मीनारे नूर बनकर अंधेरों को में भी चिराग रोशन कर सके। और चिराग से मुखातिब होते हुए सोनाली मैम ने कहा, चिराग,
तुम हमारे स्कूल के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वो रोशन चिराग हो जिससे कितने

0: तारीख राहें रोशन हो सकती हैं। तभी चराग दौड़कर सोनाली मैम के करीब पहुंच गया और कहा, मैम वाकई उस्ताद ही वो रोशन चराग है जिससे तारीख ही दूर होती है।
1: श्रोता भी सुन रहे थे अफसाना रोशन चिराग। अफसाना निगार थी महमूदा कुरैशी और इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

1530 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टोरी की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।

0: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइलों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की कार्यप्रणाली वाली घटनाएं सामने आई हैं। केरलम के

0: चार उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिले दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट पर थे, अब उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं शेष छह जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक गिरकर 24,571 पर बंद हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंदन ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। शाम 5:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा हस्तशिल्प और लघु उद्योग। नई पहल सेगमेंट में आप सुनेंगे कला संस्कृति विकास योजना। वैज्ञानिकी सेगमेंट में जानेंगे व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के बारे में। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा सांस्कृतिक विरासत का देश है भारतवर्ष। वार्ताकार होंगी दीक्षा बनर्जी। चलते चलते सेगमेंट में सुनेंगे हर घर तिरंगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पीएम कुसुम योजना। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा सब्जी वाली फसलों की देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। साथ ही सुनेंगे नई किस्में, मंडी भाव, मौसम और कुछ लोकगीत।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। चर्चा का विषय होगा हथकरघा दिवस। कानूनी वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून। वार्ताकार होंगे घुरीलाल। साथ ही सुनेंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, आज की पाती और सेहत टिप्स। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता जिसका विषय होगा भारत की हथकरघा परंपरा। वार्ताकार होंगे पार्थो सेन और ये वार्ता होगी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे संवेद स्वर में देशगान। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से विधानमंडल समीक्षा। रात्रि 8:30 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रजनी गंधा। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

गीत का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे पुरुषोत्तम दत्त शर्मा। आप प्रस्तुत करेंगे राग देश में ध्रुपद धमार गायन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म का नाम है जय संतोषी मां। शब्द रचना है प्रदीप की, संगीत दिया है सी अर्जुन ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत है शब्बीर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मर्द। शब्द रचना है इंदिवर की, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: अपने भक्तों की।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत बेला शिंदे की आवाज में। फिल्म का नाम है जोधा अकबर। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है AR रहमान ने।

इसी गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार प्यारे वसाथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूँ कार्यक्रम युवाणी में, जहाँ हम करते हैं आपसे ढेर सारी बात और खूब सारा मनोरंजन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, हजारों साल पहले हमारे गांव और छोटे शहरों में लोग अपने हाथों से कमाल की चीजें बनाते थे। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, हाथ से बने हुए कपड़े और सुंदर सुंदर चित्रकलाएं, ये सिर्फ सम्मान नहीं होते थे बल्कि उन लोगों की मेहनत, उनकी कला और उनकी पहचान होती थी। अगर हम और पीछे जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी लोग मिट्टी के बर्तन, मोहरे और गहने बनाया करते थे। यानी भारत में हस्तशिल्प की परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसी कला की वजह से भारत के उत्पाद दुनिया के कई देशों तक पहुंचते हैं। शायद इसी वजह से हम भारत को लैंड ऑफ क्राफ्ट्स भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे

आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स और लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। ये दोनों सिर्फ बिजनेसेस नहीं बल्कि हमारी कल्चर, इकोनॉमी और लाखों लोगों की रोजी रोटी का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हस्तशिल्प क्या है। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वो चीज़ जो मशीन की जगह इंसान अपने हाथों या सिंपल टूल्स की हेल्प से बनाए, उसे हम हस्तशिल्प कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मधुबनी पेंटिंग, बनारसी साड़ी, ब्लू पॉटरी, बैम्बू क्राफ्ट्स या फिर कश्मीर के पश्मीना शॉल्स। यहाँ हर क्राफ्ट के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक कलाकार। अब बात करते हैं लघु उद्योग की। लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका मतलब है ऐसा बिजनेस जो छोटे लेवल पर शुरू होता है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो लेकिन मेहनत और आइडियाज बहुत। आज के समय में होममेड फूड ब्रांड्स, कैंडल मेकिंग, सोप मेकिंग, हैंडलूम प्रोडक्ट्स और हैंडमेड ज्वेलरी जैसे काम भी लघु उद्योग का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज सोशल मीडिया ने इन बिजनेसेस को एक नई पहचान दी है, एक नई आइडेंटिटी दी है। पहले जो प्रोडक्ट सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित थे, आज वही प्रोडक्ट्स देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, अभी हाल ही में हैंडीक्राफ्ट्स और MSME सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कई एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स और वोकल फॉर लोकल कैंपेन्स का आयोजन किया जा रहा है। इससे आर्टिसंस को नए बायर्स मिल रहे हैं और उनके उत्पाद को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी मिल रही है। डिजिटल इंडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से कई कलाकार अब अपना सामान ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है। PM विश्वकर्मा योजना जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए पारंपरिक कारीगरों को ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉडर्न टूल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट की एक खास कला या प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम कर रहा है। आज हम नेशनल हैंडलूम डे भी मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन लाखों आर्टिसंस को सम्मान देना है जो सालों से अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे हाथों की कला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारा आने वाला भविष्य भी है। अगर आप एक छात्र हैं या करियर के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ जॉब ढूंढना ही ऑप्शन नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी को बिजनेस में बदल सकते हैं। आज AI से डिजाइन बनाना बहुत आसान हो गया है। कई तरह के फ्री AI टूल से ब्रांडिंग हो सकती है। सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आप फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। अगर किसी के घर में एम्ब्रॉयडरी, पोटरी, वीविंग या पेंटिंग का काम होता है तो उसे सिर्फ एक परंपरा समझकर छोड़ मत दीजिए। हो सकता है वही स्किल कल एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन जाए या एक शायद ऑनलाइन ब्रांड भी। आज के डिजिटल जमाने में टैलेंट और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, यानी एक छोटा सा आइडिया भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस भी कभी ना कभी छोटा ही था। जब हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, हम किसी आर्टिसन की रोजी रोटी, उसकी मेहनत और उसकी परंपरा को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगली बार आप जब भी शॉपिंग करें, एक बार लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स को भी जरूर देखिए। हो सकता है आपकी छोटी सी चॉइस किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ले आए। अपनी कला पर गर्व कीजिए, लोकल को सपोर्ट कीजिए और नए आइडिया से अपना फ्यूचर बनाइए। अब साथियों, हमने तो आपको जानकारी दे दी, लेकिन अब आपकी बारी। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लाई हूँ एक सवाल, तो बताइए वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट डे कब मनाया जाता है? आप सोचिए इसका उत्तर और साथ साथ इस सुहावने मौसम में लीजिए इस गीत का आनंद। हम आपको जवाब देंगे कार्यक्रम के अंत में।

साथियों, अभी हमने बात की थी हमारी हस्तकला और उन कलाकारों की जो पीढ़ियों से भारत की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। यही कला, संस्कृति और हमारी पुरानी विरासत मिलकर भारत की असली पहचान बनाती है। हमारी संस्कृति केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी वर्तमान और भविष्य की ताकत भी है। भारत की धरती पर हर राज्य, हर भाषा और हर परंपरा की अपनी एक अलग कहानी है। कहीं लोक संगीत की मिठास है तो कहीं कला और शिल्प की खूबसूरती। यही विविधता भारत को दुनिया में एक अलग पहचान देती है। हमारी

0: इसी सांस्कृतिक समृद्धि को समझने के लिए आइए सुनते हैं वार्ता। सांस्कृतिक विरासत का देश है भारतवर्ष और वार्ताकार है दीक्षा बैनर्जी।
1: हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जाति, प्रजाति, समुदाय, धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। एक ही देश में इतने विभिन्न धर्म एवं हर धर्म से जुड़ी संस्कृति के रंग एक साथ एक ही जगह पर देख पाना भारत जैसे देश में ही संभव है। यही कारण है कि भारत को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ जो सम्मान सिख संप्रदाय की संस्कृति को मिलता है, उतनी ही इज्जत मुस्लिम संप्रदाय की संस्कृति को। जो प्यार ईसाई धर्म से जुड़ी संस्कृति के लिए है, ठीक उतना ही आदर हिंदू संस्कृति के लिए है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब बराबर हैं। भारत में जितने विभिन्न धर्म हैं, उतने ही विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। सब अलग अलग समुदाय के लोगों की नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं और संस्कृति भी। भारतीय संस्कृति का इतिहास सिंधु घाटी संस्कृति से शुरू होता है, जिसमें समय बीतने के साथ साथ भारत के आस पड़ोस में स्थित अन्य देशों की संस्कृति का समामेलन होता रहा। इस सभ्यता से हमको बहुत कुछ मिला है। जिस तरह हमारे घर में अनाज को बड़े कनस्तरों में बंद करके सुरक्षित रखा जाता है, यह उसी सभ्यता की देन है। पुरातत्व विभाग को अनुसंधान के दौरान पता चला कि मनुष्य उस समय काफी विकास कर चुका था। जो हथियार, घरेलू सामान, सोने चांदी के आभूषण, मुहर, बर्तन आदि हम आज अपने इस्तेमाल में लाते हैं, वे सब उस समय मनुष्य ने आविष्कार कर लिया था। हालांकि ये सब 5000 साल पहले की बात है, मगर उस समय भी ये अत्यंत विकसित सभ्यता थी। इसी सभ्यता से बहुत कुछ हमको विरासत में प्राप्त भी हुआ है, जैसे कि व्यापार, तकनीक, खेतीबाड़ी, सूती कपड़े आदि, ये सब इसी सभ्यता की देन है। इसके बाद हम अगर अपनी विरासत की बात करें तो वैदिक सभ्यता का इतिहास सबसे पुराना है। इसमें हिंदुओं के चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हैं। इन वेदों में ईश्वर, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि विषय से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। यही सब सभी धर्मों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी समुदाय के क्यों ना हो और कितने ही विकसित देश का हिस्सा क्यों ना बन जाएं, मगर हम आज भी सुबह उठकर स्नान करके भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं भूलते। अगर सच में भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो इसका कैनवास इतना विशाल है और यहाँ सभी धर्मों के विभिन्न रंग हैं। इतने रंग होने के बाद भी भाईचारे और सहयोग के इतने उदाहरण हैं। इतिहास में अलग अलग समय में विदेशी हमलों के कई बार झेलने के बाद भी इसकी संस्कृति और एकता कभी नहीं हारी। भारतीय संस्कृति कभी कठोर नहीं रही। यही कारण है कि समय समय पर यह दूसरी संस्कृतियों को अपनाती रही है। इतनी विविधताओं के बाद भी भारत की कुछ अनूठी बातें हैं जो विश्व विख्यात है, जैसे फूलमाला से स्वागत करना, अभिवादन के तौर तरीके, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा की शादियाँ, भारतीय गहने, नृत्य, संगीत, प्रदर्शन कला, मेले, त्योहार, मूर्तियाँ आदि। भारतीय संस्कृति के बारे में जितना लिखा जाए वह कम है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति चली आ रही है, वह आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई संस्कृति और पुराने समय की यादों को संजोकर रखने की कीमत अनमोल है। जो समय बीत जाता है वे कभी वापस नहीं आता, किंतु हम अतीत के पन्नों को हमारी विरासत के तौर पर इमारत और पुस्तकों को संजोकर रख सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने शानी के तौर पर तमाम मकबरे, मस्जिद, मंदिर और संस्कृति दी है, जिसको संरक्षित करके रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे एलोरा की गुफाएं दुनिया भर को भारत की हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति की कहानी बताती है। अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन यह संस्कृति

0: भी भुला दी जाएगी। किसी भी देश की विरासत उसके गौरवशाली व समृद्ध अतीत का प्रतीक होती है, जिसकी नींव पर सुनहरे भविष्य की कल्पना साकार होती है। मगर हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई यह स्मृति चिन्ह अनमोल है और इसकी तुलना हम किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबका दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति एवं विरासत को संभाल कर रखें, क्योंकि यही हमारे भारतीय होने की तो पहचान है।
1: साथियों, अभी हमने जाना कि भारत की पहचान सिर्फ उसकी प्रगति या तकनीक से ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति और अनमोल विरासत से भी है। हमारी परंपराएं, कला, भाषा, संगीत और ऐतिहासिक धरोहरें हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। लेकिन एक सवाल यह जरूर आता है कि हमारी कला इतनी समृद्ध है तो इसे आने वाले जनरेशन तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट मिले और हमारी परंपराओं को एक नई पहचान। इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, कला संस्कृति विकास योजना, जिसे हम KSVY के नाम से भी जानते हैं। सरल शब्दों में समझें तो KSVY एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य भारत की कला और संस्कृति को प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करना और डेवलप करना है। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके माध्यम से आर्टिस्ट, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ताकि वे अपने कल्चरल प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स और अन्य एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां हर राज्य की अपनी अलग भाषा, अलग कला, अलग संगीत और अलग रीति रिवाज हैं, वहां इन सब को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटे गांव या ट्राइबल एरियाज में रहने वाले आर्टिस्ट के पास टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। KSVY जैसे प्रोग्राम्स उन्हें अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का मौका देते हैं। इस योजना का एक बड़ा फोकस है कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो ट्रेडिशनल डांस हो, फोक म्यूजिक हो, हैंडीक्राफ्ट हो या पुरानी परंपराएं, इन सबको सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। KSVY के थ्रू कल्चरल फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को सपोर्ट किया जाता है। साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे म्यूजियम्स, ऑडिटोरियम्स और कल्चरल सेंटर्स के डेवलपमेंट में भी मदद दी जाती है। और आज के डिजिटल जमाने में तो भाई सिर्फ कला को बचाना ही नहीं, बल्कि उसे नए लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। आज एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट या परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया के सामने रख सकता है। ऐसे में सरकारी योजना और टेक्नोलॉजी मिलकर भारतीय संस्कृति को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जा सकती हैं। यूथ के लिए भी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको आर्ट, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन या इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो कल्चरल सेक्टर्स में करियर पॉसिबिलिटीज हैं। संस्कृति सिर्फ इतिहास का विषय नहीं, बल्कि एक ग्रोइंग फील्ड भी है। दोस्तों, हम जानते हैं संस्कृति हमारी पहचान है। अगर हम अपनी जड़ों को समझेंगे तभी ये विरासत आगे आने वाले जनरेशन तक पहुंच पाएगी। कला संस्कृति विकास योजना इसी दिशा में एक कदम है, जहां परंपरा और प्रोग्रेस दोनों साथ चल सकते हैं। अब साथियों, वक्त छोटे से अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में और आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी स्नेहा को। अभी हमने बात की अपनी कला, संस्कृति और विरासत को संभालने की, लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि भारत की पहचान सिर्फ अपने इतिहास से नहीं, बल्कि अपनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से भी बनती है। एक तरफ जहां हम अपनी पुरानी परंपराओं, हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल हेरिटेज को संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के साथ भविष्य की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसी बदलते भारत की

मिसाल है वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। नाम सुनने में थोड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन इसका काम बहुत एडवांस्ड है। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग सिस्टम्स के बीच बहुत ही एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन यानी समय को मैच करने के काम करती है। जैसे हमारी रोज़ की ज़िंदगी में अगर दो घड़ियों का समय अलग हो जाए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर स्टॉक मार्केट, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफेंस सिस्टम्स या पावर जैसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में समय का छोटा सा भी अंतर आ जाए तो इसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है ये आप खुद ही जानते हैं। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स की मदद से डेटा और टाइम को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रांसफ़र करती है। ये नैनो सेकेंड लेवल तक की प्रिसीजन प्रोवाइड कर सकती है, यानी एक सेकेंड के बहुत छोटे हिस्से तक का डिफरेंस भी मेजर कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को ओरिजिनली यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। आज इसका यूज दुनिया के एडवांस्ड साइंटिफिक सिस्टम्स में किया जा रहा है। भारत में भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि देश में एक एक्यूरेट और रिलायबल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स डेवलप किए जा सकें। इसमें CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी NPL, इसरो और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का योगदान है। इसका फायदा सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स, डिफेंस और इवन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जैसे सेक्टर्स को एक्यूरेट टाइमिंग की जरूरत होती है। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को और रिलायबल और सिक्योर बनाने में मदद कर सकती है। इसका एक और बड़ा फायदा है दोस्तों, भारत अपनी क्रिटिकल टाइमिंग नीड्स के लिए फॉरेन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी भारत तो ये भी एक तरह से अपनी टेक्नोलॉजी की विरासत बनाने की जर्नी है। जैसे हमारे आर्टिसंस अपनी कला से भारत की पहचान बनाते हैं, वैसे ही हमारे साइंटिस्ट अपनी इनोवेशन से नए भारत की तस्वीर बना रहे हैं। दोस्तों, भारत की असली ताकत यही है, जहाँ एक तरफ हम अपनी पुरानी परंपराओं को संभालते हैं, वहीं दूसरी तरफ नए विचार और टेक्नोलॉजी को भी अपनाते हैं। यही कॉम्बिनेशन भारत को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, जहाँ रूट्स भी हैं और विंग्स भी। अब साथियों, वक्त है आपको उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट डे 10 जून को मनाया जाता है। साथियों, ये दिन दुनिया भर के कारीगरों, उनके पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान करने के लिए समर्पित है। और अब वक्त है कार्यक्रम में आपको आखिरी गीत सुनवाने का। तो संगीत की दुनिया से हम लाए हैं आपके लिए ये प्यारा सा गीत।

अब साथियों, कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं एक ऐसे अभियान की जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है, हर घर तिरंगा अभियान। ये सिर्फ एक अभियान नहीं है दोस्तों, बल्कि एक भावना है जो हमें याद दिलाती है कि भले ही हमारा धर्म अलग हो, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। जब भी तिरंगा लहराता है तो हर भारतीय के दिल में एक ही एहसास जागता है, अपने देश के लिए गर्व और समर्पण का। तो साथियों, चलते चलते मैं बस यही बोलूंगी कि तीन रंगों में बसी है भारत की कहानी, तीन रंगों में बसी है भारत की कहानी, हर रंग में छिपी है वीरों की कुर्बानी। जिस तिरंगे की शान में वीरों ने जान लुटा दी, जिस तिरंगे की शान में वीरों ने जान लुटा दी, उसी के हर रंग में बसी है भारत माँ की कहानी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

किसान साथियों, आप सुन रहे हैं अपना दैनिक और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम ग्रामीलोक। और आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी शोभना। स्वीकार करें हमारी, राम राम। किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपनी खेती किसानी के कार्यों में व्यस्त भी होंगे। भाइयों, खेती हमारे गांव की पहचान है और हम किसानों की भी पहचान है। किसान पूरे साल मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज बोता है, खाद भी डालता है और समय समय पर सिंचाई भी करता है। लेकिन अगर समय पर पानी ना मिले तो सारी मेहनत पर पानी ही फिर जाता है। और आजकल मौसम भी पहले जैसा नहीं रहा भाइयों। कभी तेज धूप है तो कभी कम बारिश है और कभी अचानक से बारिश। ऐसे में किसान के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है कि खेत तक समय पर पानी कैसे पहुंचे।

अब जरा सोचिए, अगर खेत में बिजली ही ना आए या रात के 2 से 3 बजे बिजली मिले तो किसान को नींद छोड़कर खेत तो जाना ही पड़ता है ना। कई जगह बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और जो किसान डीजल इंजन से सिंचाई करते हैं उन्हें डीजल के बढ़ते दाम अलग से परेशान करते हैं, यानी कि मेहनत भी ज्यादा और खर्च भी ज्यादा। तो इन्हीं परेशानियों को कम करने और किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो किसान भाइयों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसान सूरज की रोशनी से अपने खेत की सिंचाई कर सके। इसके लिए किसानों को सोलर पंप लगाने में सहायता दी जाती है, यानी कि अब किसान को बिजली आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही हर बार डीजल भरवाने की चिंता होगी। धूप निकली और पंप चल पड़ा। अगर हम आज भी सिर्फ पुरानी व्यवस्था पर ही निर्भर रहे तो क्या दिक्कतें हैं, जरा सोचिए। बिजली कभी भी चली जाती है, कई बार रात में ही बिजली मिलती है, डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, सिंचाई समय पर ना होने से फसल का जो उत्पादन है ना वो भी कम हो सकता है, खेती की लागत बढ़ती जाती है और मुनाफा कम हो जाता है, यानी जितनी मेहनत किसान करता है उसका पूरा फायदा उसे नहीं मिल पाता है। पीएम कुसुम योजना से आपको बताते हैं कि लाभ क्या क्या है। अब अगर किसान सोलर पंप का इस्तेमाल करता है तो दिन में जब चाहे सिंचाई कर सकता है, बिजली और डीजल का खर्च काफी कम हो जाता है, फसल को समय पर पानी मिलता है, खेती की लागत घटती है और आमदनी बढ़ने की संभावना रहती है। कुछ मामलों में अतिरिक्त सौर ऊर्जा से आय का अवसर भी मिल सकता है। और किसान साथियों, ये तो हमारे किसान साथियों की बात थी, हमारी बहनों को भी इससे फायदा है। तो बहनों को हमारे क्या फायदा है, जब खेत की सिंचाई समय पर होगी तो घर की रसोई के लिए सब्जियां उगाना आसान हो जाएगा। अगर महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो वे सब्जी, फूल या अन्य फसलों की खेती करके परिवार की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकती हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, आज समय बदल रहा है और खेती के तरीके भी बदल रहे हैं। अगर नई तकनीक हमारे खर्च को कम करे, मेहनत बचाए और आमदनी बढ़ाने में मदद करे तो उसे अपनाने में हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप भी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से जानकारी अवश्य ले सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा अपनाकर खेती को अधिक किफायती और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जब आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक का साथ मिलता है ना, तो खेती और भी समृद्ध होती है। और अब इस सुहावने सावन के मौसम में, जब खेत हरियाली की चादर ओढ़े हुए हैं और रिमझिम फुहारे मन को आनंदित कर रही हैं, तो आइए कुछ पल लोक संस्कृति के रंग में रंगते हैं, सुनते हैं सावन की मिठास से भरा एक सुंदर लोकगीत।

0: किसान भाइयों और बहनों, जब भी हम हरे भरे खेतों में लहलहाती सब्जियों की कतारें देखते हैं ना, तो मन खुश हो जाता है। लेकिन इन हरी भरी फसलों के पीछे किसान की दिन रात की मेहनत, धैर्य और उम्मीदें छिपी होती हैं। खेत में बोया गया हर बीज एक नए सपने की शुरुआत होती है। किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो, मंडी में उसे अच्छा दाम मिले और उसके परिवार के चेहरे पर खुशियाँ आएं। लेकिन बदलता मौसम, कीट रोगों का प्रकोप, पोषक तत्वों की कमी और समय पर सही देखभाल ना मिल पाने के कारण कई बार किसान की मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम खेती के साथ साथ फसल की वैज्ञानिक और सही देखभाल के तरीकों को भी अपनाएं और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को सरल और आसान तरीके से समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। वे बताएंगे कि सब्जी वाली फसलों की देखभाल कैसे करें ताकि कम लागत में बेहतर उत्पादन मिले और किसान की मेहनत का पूरा सम्मान हो। तो आइए ध्यान से सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की ये उपयोगी वार्ता।
1: किसान भाइयों, अपना देश कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 65-70% जनता परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। यद्यपि देश ने काफी तरक्की की है, परंतु यहाँ के लोग अपना स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता के प्रति कम जागरूक हैं। स्वस्थ एवं उत्पादक देश बनाने के लिए संतुलित आहार प्रदान करना भी आवश्यक है। ये सब्जियां ही हैं जिनको उगाकर हम अपने नागरिकों को स्वस्थ रख सकते हैं, अर्थात सब्जियों के सेवन से स्वस्थ एवं निरोग रखा जा सकता है। सब्जियों में आवश्यक मात्रा में विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन जैसे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति सब्जियों का कम उपयोग करते हैं, 300 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कम करते हैं, उचित रूप से नहीं करते हैं, इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

करते हैं। भारत जैसे शाकाहारी देश में सब्जियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। भोजन में सब्जियों को ज्यादा मात्रा में लेने की परम आवश्यकता है। सब्जियों की औसत खपत तभी बढ़ सकती है जब वे प्रचुर मात्रा में पैदा की जाएं। अतः हमारे सब्जी उत्पादकों को सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब हमारे किसान भाई अपना ध्यान सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में हो रही नई नई तकनीकियों को अपनाएंगे। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि रवि का मौसम सब्जियों के लिए अति उत्तम होता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां इस समय उगाई जाती हैं। प्रमुख रूप से इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। जिनसे उत्पादन मिल रहा है उनकी देखरेख कैसे करें तथा जिनसे कुछ समय के बाद उत्पादन मिलेगा उन पर भी हम समुचित ध्यान देकर ही तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, खीरा की फसल अपनी अंतिम अवस्था में इस समय होगी। इसमें यदि इस समय 2% यूरिया का घोल स्प्रे करेंगे तो चलते चलते अच्छी गुणवत्ता वाले फल मिल सकते हैं। भिंडी और मिर्च में नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से 8 से 10 दिनों पर छिड़कते रहने से स्वस्थ फल मिलते हैं। सब्जियों का राजा आलू इस समय बोया जा रहा होगा। इसकी खेती करने वाले किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से संस्तुत प्रजाति का चयन कर विश्वसनीय स्थान से बीज क्रय कर संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तभी तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। बीज को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए आलू बीज को उपचारित करना भी अत्यावश्यक होता है। 3% बोरिक एसिड का घोल बनाकर 10 से 15 मिनट आलू को इस घोल में डुबोकर उपचारित कर सकते हैं। कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज और कुफरी लालमा इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। आलू की बुवाई कर रहे हों तो बुवाई के समय 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फेट तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग कर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। साथ ही 35 से 40 किलोग्राम गंधक, 12 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 से 12 किलोग्राम बोरॉन को भी प्रति हेक्टेयर लगाने से अच्छी क्वालिटी के कंद मिलते हैं। इससे वजन और चमक भी बढ़ती है। आलू में 25-30 दिन की फसल में 108 से 110 किलोग्राम यूरिया को टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ाएं। सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, खेत को कभी भी ज्यादा सूखने न दें। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर आदि फसलों में खुरपी से निराई करें तथा पौधों का बिरलीकरण जरूर करें, नहीं तो इनका उचित आकार नहीं मिल सकेगा। एनपीके 18:18:18 का 1.5 से 2% घोल स्प्रे कर सकते हैं। पालक, मेथी, धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों की फसलों में कोई भी उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसल में नहीं करें, क्योंकि इनके पत्ते थोड़े मांसल होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। पालक, मेथी में कोई भी कीट लगे तो सिर्फ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाकर फसल पर स्प्रे करें। फूलगोभी, पात गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली जिसे हरी गोभी भी कहते हैं कि खड़ी फसलों में यदि 1 माह की हो गई हो तो निराई के समय 100-125 किलोग्राम यूरिया में 2 किलोग्राम नीम प्लस पाउडर मिलाकर प्रति हेक्टेयर बखेरना न भूलें, क्योंकि इन फसलों को ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 15-20 दिन के बाद पुनः प्रयोग करना चाहिए। यदि फूलगोभी की नई पौध रोपित कर रहे हों तो उस खेत में 10-12 किलोग्राम बोरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाए तो फूलगोभी सफेद रंग के ही मिलेंगे। सेम की खेती में फूल आ रहा होगा, अतः खरपतवारों से खेत को मुक्त रखें। माहू कीट सबसे पहले इसी फसल को प्रभावित करता है, अतः प्रकोप होते ही नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा 0.5 मिलीलीटर इमीडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशी रसायन प्रति लीटर पानी की दर से घोल तैयार कर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही यदि सड़न और गलन हो रही हो तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की हिसाब से इसमें थायोफिनिट मिथाइल नामक फफूंदनाशी भी मिलाकर खुले मौसम में जब पत्तियों पर ओस न हो तब स्प्रे करें। 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव पुनः करते रहें तो स्वस्थ एवं गुणवत्ता वाली फलियां मिलती हैं। फर्रुखाबाद जिले में तो सेम के विकसित कच्चे दाने

0: से नमकीन का निर्माण होता है जो कि काफी ऊंचे भाव पर बिकता है। एटा, मैनपुरी और अलीगढ़ जनपद में लहसुन की खेती भी की जाती है। ज्यादातर किसान भाई अपनी फसल बो चुके होंगे। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए बुवाई के तुरंत बाद 2.5 से 3 लीटर पेंडी मेथिलीन नामक खरपतवार नाशक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। यह तृणनाशी खरपतवारों को उगने से रोकता है, इन्हें मारता नहीं है। फसल और खरपतवारों के उगने से पूर्व अर्थात फसल बुवाई के 2-3 दिन के भीतर ही प्रयोग कर लेना चाहिए। लहसुन में बुवाई के बाद बालू में मिलाकर खेत में बखेर कर हल्की सिंचाई कर देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसान भाइयों, आपकी प्याज पौध इस समय पौधशाला में खड़ी होगी। 50-55 दिन की पौध लगानी चाहिए। कभी कभी पौधशाला में आद्र पतन नामक रोग पौध में लग जाता है। जगह जगह पर पौधे भूमि की सतह से गलकर मरने लगते हैं। इस रोग से बचाव हेतु पौधों पर थायोफिनिट मिथाइल फफूंद नाशक रसायन की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी तथा 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति 15 लीटर पानी अर्थात स्प्रे की एक टंकी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पौधशाला की भूमि का उपचार गर्मी की जुताई कर जरूर कर लेना चाहिए। इससे बीज जनित रोग नहीं फैलते, भूमि जनित रोग रुक जाते हैं। टमाटर, मिर्च और बैंगन की खड़ी फसलों में 15-20 दिन के अंतराल से सकोरा मोज़ेक से बचाव करने के लिए कीटनाशक रसायन इमीडा क्लोप्रिड 17.5% वाला कीटनाशी की 250 मिलीलीटर मात्रा 1 हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते रहें। यह रोग वायरस से फैलता है। यह वायरस खेत में मौजूद मच्छर और विभिन्न प्रकार के फुदकों के द्वारा बीमार पौधों से स्वस्थ पौधों तक पहुंचता है। यदि यह कीट न हो तभी रोग को रोका जा सकता है। पौधशाला में पौध मच्छरदानी में उगाने से इस रोग को कम किया जा सकता है। अंत में मैं अपने किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि वह अपनी सभी सब्जी फसलों हेतु उचित जानकारी के लिए विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं।
1: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की वार्ता। विषय था सब्जी वाली फसलों की देखभाल। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको उनके द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी कि अपनी सब्जी वाली जो फसलें उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है। तो किसान साथियों, आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि नई किस्में कर रही हैं आपका इंतज़ार।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीलोक में। और आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो हम सफर शोभना। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि नई किस्में आपका इंतजार कर रही हैं, तो साथियों नई किस्मों में आज हम आपको बताएंगे सरसों की उन्नत किस्म पूसा सरसों 32। तो खेती में अच्छी पैदावार का एक बड़ा आधार है उन्नत किस्म का बीज। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी स्वस्थ होगी और उत्पादन भी बेहतर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आज नई किस्में में बात करते हैं सरसों की उन्नत किस्म पूसा सरसों 32 की। किसान साथियों, ये किस्म उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी खासियत

अच्छी पैदावार का एक बड़ा आधार है उन्नत किस्म का बीज। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी स्वस्थ होगी और उत्पादन भी बेहतर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आज नई किस्में में बात करते हैं सरसों की उन्नत किस्म पूसा सरसों 32 की। किसान साथियों, ये किस्म उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी खासियत ये है कि इसके पौधे मजबूत होते हैं और इनमें अच्छी संख्या में फलियां लगती हैं। सही समय पर बुवाई, संतुलित खाद और समय पर सिंचाई करने से किसान इससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि इस किस्म के दानों में तेल की मात्रा भी अच्छी होती है। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता की फसल मिलने की संभावना रहती है। लेकिन किसान साथियों, याद रखें, केवल अच्छा बीज ही काफी नहीं है। खेत की तैयारी, प्रमाणित बीज का चयन, समय पर बुवाई, खरपतवार नियंत्रण और कीट रोगों की निगरानी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बार सरसों की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या फिर अधिकृत बीज विक्रेता से इस किस्म की जानकारी और प्रमाणित बीज अवश्य प्राप्त करें। तो किसान साथियों, नई और उन्नत किस्मों को अपनाइए, वैज्ञानिक सलाह का पालन कीजिए और अपनी खेती को अधिक लाभदायक बनाइए। यही है सफल और समृद्ध किसान बनने की पहचान। तो किसान भाइयों बहनों, आइए अब जानते हैं आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम का हाल। आप सभी देख रहे हैं कि बरसात का मौसम बना हुआ है। आज आगरा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर ना गरज और चमक के साथ भी बौछारें पड़ रही है। अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ऐसे मौसम में हमारे किसान साथियों के लिए सलाह ये है कि किसान साथियों, बरसात के मौसम में छोटी छोटी सावधानी अपनाकर आप भी अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। जैसे जिन खेतों में पानी भर गया है वहाँ से जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक पानी भरा रहने से फसल की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। अगर तेज बारिश की संभावना हो तो खाद, उर्वरक या कीटनाशकों का छिड़काव फिलहाल टाल दें। बारिश रुकने और मौसम साफ होने पर ही ये काम आपको करना चाहिए। सब्जी वाली फसलों में नियमित रूप से कीट और रोगों की निगरानी करते रहें, क्योंकि नमी बढ़ने पर फफूंद और अन्य रोग तेजी से फैल सकते हैं। खेत की मेड़ों को मजबूत रखें ताकि बारिश का पानी बहकर मिट्टी और पोषक तत्वों को नुकसान ना पहुंचाएं। बिजली चमकने या फिर तेज गरज के समय खेत में काम करने से बचें और सुरक्षित स्थान पर रहें। तो किसान भाइयों और बहनों, मौसम की जानकारी पर ध्यान दें जो हम आपको बताते हैं। कृषि विभाग की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए और समय पर सही निर्णय लेकर अपनी फसल की बेहतर देखभाल भी आपको जरूर करनी चाहिए। किसान साथियों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सुबह से कल से खूब सारी बारिश हो रही है, क्योंकि भाई सावन का महीना भी चल रहा है। पर किसान साथियों, सावन ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि अपनों से मिलने, रिश्तों की मिठास बढ़ाने और लोक गीतों की परंपरा को जीवंत रखने का भी महीना है। तो आइए इसी सुहाने माहौल को और आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और मनमोहक लोकगीत, जिसे अपनी आवाज में पिरोया है दीपाली गौड़ ने।

किसान साथियों, घड़ी की सुइयों ने हमें इशारा कर दिया है, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, अगली बार मिलना है तो इस समय विदा तो लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। तो दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो सखी शोभना को। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे श्रमिक श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के मजदूर मंडल कार्यक्रम में आप सभी श्रमिक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और मेहनत की पहचान है। यह क्षेत्र है हथकरघा उद्योग।

साथियों, हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा केवल कपड़ा बनाने का काम नहीं है, बल्कि ये भारत की सदियों पुरानी कला, कारीगरी और आत्मनिर्भरता की कहानी है। हमारे देश के लाखों बुनकर भाई बहन अपने हाथों की मेहनत और हुनर से सुंदर वस्त्र तैयार करते हैं और उनके बनाए कपड़े देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। साथियों, हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य हमारे बुनकरों को योगदान को सम्मान देना, हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। एक बुनकर जब कंधे पर बैठता है तो केवल धागों को नहीं जोड़ता बल्कि अपनी मेहनत, धैर्य और अपने सपनों को भी उस कपड़ों में पिरोता है। एक साड़ी, एक चादर या एक कपड़े के पीछे किसी श्रमिक के कई घंटों का परिश्रम छिपा होता है। आज सरकार हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बुनकर को प्रशिक्षण, नए डिज़ाइन की जानकारी, ऋण सुविधा और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सहायता दे रही है। हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े श्रमिकों को अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का संबंध 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से है। वर्ष 1905 में अंग्रेजी शासन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देश में बने सामानों को अपनाना था। लोगों ने विदेशी कपड़ों को छोड़कर भारतीय कपड़ों और खास करके हाथ से बने कपड़ों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे हमारे बुनकरों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिला। उस समय स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को यह संदेश दिया कि अगर हम अपने देश में बने सामानों का उपयोग करेंगे तो हमारे मेहनतकश कारीगरों और श्रमिकों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और आज भी जब हम हथकरघा से बने वस्त्र खरीदते हैं तो हम केवल एक कपड़ा नहीं खरीदते, बल्कि किसी बुनकर परिवार की मेहनत और उसकी कला का सम्मान करते हैं। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी अपने देश में बनी वस्तुओं को महत्ता देंगे। इसी के साथ अब साथियों वक्त हो चला है मनोरंजन का, पर उससे पहले जान लेते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, माटी नौ महोत्सव क्या है? एक बार फिर दोहराती हूँ, माटी नौ महोत्सव क्या है? उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा।

साथियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक किले की यात्रा पर जिसने सदियों के इतिहास को अपने अंदर समेट के रखा है। ये किला है कालिंजर दुर्ग। विंध्य पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित कालिंजर किला भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास हजारों वर्षों से पुराना है। कालिंजर शब्द का अर्थ माना जाता है काल यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी क्षेत्र में काल पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी है। साथियों, इस किले पर कई महान राजवंशों का शासन रहा। चंदेल राजाओं के समय कालिंजर दुर्ग ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। चंदेल शासकों ने इसे अपनी शक्ति और गौरव का केंद्र बनाया। किले के अंदर बने मंदिर, शिलालेख और मूर्तियां आज भी उस समय की कला और स्थापत्य की सुंदर मिसाल है। कालिंजर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए कई शासकों ने प्रयास किया। मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1569 में इस किले पर अधिकार किया। इससे पहले शेरशाह सूरी ने इस किले पर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वर्ष 1545 में कालिंजर की लड़ाई के दौरान बारूद विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्ग में स्थित नीलकंठ मंदिर आकर्षण का विशेष केंद्र है। यहाँ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और प्राचीन स्थापत्य कला देखने को मिलती है। साथियों, कालिंजर दुर्ग हमें यह संदेश देता है कि हमारी धरोहर केवल पत्थरों की इमारतें नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और वीरता की कहानी भी है। और इन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। वैसे साथियों, आपको आज का प्रश्न तो याद है ना? आज का प्रश्न है, माटी नौ महोत्सव क्या है? साथियों, हमारी पहचान केवल हमारे काम से नहीं, बल्कि हमारी माटी यानी हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से भी है। दोस्तों, माटी नौ पूर्वांचल महोत्सव है जो पूर्वांचल क्षेत्र की कला, संस्कृति, खान पान, पर्यटन और विरासत को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। ये माटी नाम हमें अपनी जड़ों, अपनी जन्मभूमि और अपनी परंपराओं से जुड़ने का संदेश देता है। साथियों, पूर्वांचल की धरती ने देश को लोकगीत, लोक कला, साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं की समृद्ध विरासत दी है। इस महोत्सव में भोजपुरी और अवधी, लोकगीत, पारंपरिक कला, क्षेत्रीय व्यंजन, हस्तशिल्प और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया जाता है। और इस तरह के आयोजन हमारे श्रमिक भाइयों और कारीगरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से उनके हुनर और मेहनत को पहचान मिलती है। चाहे वो बुनकर हो, हस्तशिल्प कलाकार हो या छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग हों, हमारी संस्कृति को जीवित रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, आज के समय में जब लोग रोजगार के लिए अपने गाँव या क्षेत्र से दूर चले जाते हैं, ऐसे में ये सांस्कृतिक आयोजन उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़ने का अवसर देता है। आइए हमारी इस धरोहर को हम सब मिलकर सहेजें और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। साथियों, हम दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भविष्य संवारते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता और

0: पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम ना हो तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून क्या कहता है? साथियों, भारत के कानून में पत्नी, बच्चों और जरूरतमंद माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 144 और दूसरे संबंधित कानूनों के तहत अगर कोई सक्षम व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वो न्यायालय से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। आइए इस कानून के बारे में विस्तार से जानते हैं वार्ता के जरिए। वार्ता का विषय है माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून। वार्ताकार है घूरेलाल।
1: माता पिता एवं पत्नी का भरण पोषण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम करता है और आयु के अनुसार ही घर परिवार को चलाता है, लेकिन कई बार आपसी टकराव और मुकदमेबाजी के कारण परिवार का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के भरण पोषण से मना कर देता है। ऐसे में पुलिस और न्यायालय ही एकमात्र सहारा होते हैं, जिनकी मदद से जीवन यापन के लिए समुचित धन और दूसरी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कानून पारित किए हैं जिनके तहत माता पिता, पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्य भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इन कानूनों में प्रमुख हैं दंड प्रक्रिया संहिता, हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, वृद्ध माता पिता का भरण पोषण अधिनियम आदि। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत माता पिता एवं पत्नी अपने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए दीवान न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। प्रत्येक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। न्यायालय को भरण पोषण का भत्ता निश्चित करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिन माता पिता एवं पत्नी बच्चों के प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तब न्यायालय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी बच्चों के भरण पोषण के लिए भत्ता दे, तथा न्यायालय को यह भी देखना होता है कि प्रत्येक माह कितना भत्ता दिया जाए। यह उस व्यक्ति की आयु और संपत्ति पर निर्भर करता है। अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है लेकिन पत्नी को यह मालूम हो जावे कि पति अपने साथ दूसरी पत्नी रख रहा है तो पत्नी पति के अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, माता पिता एवं बच्चों को भरण पोषण देने से बचने के लिए जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है और भत्ते की धनराशि अदा न करने पर सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता एवं पत्नी बच्चों के साथ जार कर्म करता है तो वृद्ध माता पिता एवं पत्नी अलग रहकर भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता पिता एवं पत्नी के साथ मारपीट करता है, घर से बाहर निकाल देता है या घर से निकालने को विवश कर देता है तो उस व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर बाद भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू विध अधिनियम 1956 के अनुसार भरण पोषण हिंदू विध के अनुसार जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने वृद्ध माता पिता एवं पत्नी बच्चों के भरण पोषण अपनी आयु के अनुसार करे। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पत्नी विवाह के बाद अपने पति अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होती हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू पत्नी अपने पति से भरण पोषण अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती करने के अधिकारी हैं। उनका पति कुरता का व्यवहार करता है, पति की कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ऐसी स्थिति में हिंदू दत्तक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता एवं बच्चे भी आते हैं जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता पत्नी के अलावा विधवा पत्नी जब तक वह पुनर्विवाह ना कर ले, पुत्र पुत्र का पुत्र भी पिता की संपत्ति में से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भरण पोषण ऐसी महिलाएं जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, ऐसी पीड़ित महिलाओं दीवान न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। जो पति पत्नी के रूप में एक घर

0: में निवास कर चुके होते हैं, तब उस पति का यह अधिकार होता बनता है कि वह अपनी पत्नी को भरण पोषण की व्यवस्था करे तथा पत्नी के साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का भी प्रावधान दिया गया है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक और कल्याण विधेयक 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को पेश किया गया था, जिसमें कहा गया कि वयस्क संतानों को अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी का भरण पोषण के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही भरण पोषण समुचित भोजन कपड़ा आवास एवं उनकी बीमारी की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान विधि में आश्रित बालक हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता पर आधारित है, जो वृद्ध माता पिता को प्रतिमा 500 रुपये देने का प्रावधान करती है, लेकिन ये अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भत्ता 10,000 रुपये तक का प्रावधान करती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को भुगतान नहीं करती है, वह व्यक्ति 3 माह के कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता या दादी दादा अपनी संतानों में से एक या अधिक के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिक उस संबंधी के विरुद्ध भी प्रवाद दायर कर सकते हैं जिसे उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। वरिष्ठ माता पिता निम्न के भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, संतान माता पिता उन संबंधियों से जो उन संपत्ति पर उत्तराधिकारी हैं। अगर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो बीच में आपस में राजीनामा का भी प्रावधान किया गया है। भरण पोषण की धनराशि का भुगतान न करने पर 1 मास की सजा हो सकती है और घर से निकाल देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह सरकारी आवासों में वृद्धों की देखभाल, वृद्धों को प्राण और स्वतंत्रता की संरक्षण अधिनियम करने हेतु पुलिस की साथ व्यवस्था की गई है, लेकिन संयुक्त परिवार प्रणाली में टूट फूट के कारण वृद्धों की व्यापक संख्या का उनके परिवार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप तमाम वृद्ध व्यक्ति विधवाएं अपने अंतिम समय को अकेले व्यतीत करने को बात हो रही है।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून। वार्ताकार थे घूरेलाल। अब वक्त है अंतराल का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, बरसात के मौसम में सर्दी जुखाम, गले में खराश और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमारी रसोई में मौजूद एक छोटी सी लौंग हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। लौंग में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिनमें जीवाणुरोधी यानी एंटीबैक्टीरियल और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। ये गले की खराश में आराम पहुँचाते हैं। साथ ही अदरक तुलसी के साथ लौंग वाली चाय बरसात में राहत देती है। पर साथियों, ध्यान रखिए कि ये लौंग एक घरेलू सहायक उपाय है, दवा का विकल्प नहीं। लौंग का सेवन सीमित मात्रा में करें और अगर बुखार या लंबे समय से खांसी है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। साथियों, परिवार केवल रिश्ते नहीं होते, ये प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है। जब घर में माता पिता का आशीर्वाद और जीवन साथी का साथ होता है

तो जीवन की हर मुश्किल घड़ी आसान लगने लगती है। इन्हीं खूबसूरत रिश्तों को समर्पित है आज की पाती। हमें पत्र लिखा है हमारे श्रोता राम नारायण जी ने। वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके माता पिता मुस्कुराकर उनसे हाल चाल पूछते हैं। पत्नी जब शाम को एक गर्म चाय का कप देती है तो दिन भर की सारी थकान मानो पल भर में मिट जाती है। तब उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दौलत उनका परिवार ही है। वो अपने सभी मेहनतकश साथियों से कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपने परिवार का सम्मान करें और उनके साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताएं। इसी प्यारे संदेश के साथ उन्होंने अपने माता पिता और जीवन साथी को समर्पित किया है ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए। इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को

0: भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अमृत के दूसरे चरण के तहत उधमपुर शहर के लिए 124 करोड़ से अधिक की जल आपूर्ति संवर्धन योजना सहित 16 करोड़ से अधिक की जल प्रबंधन परियोजना शामिल है। केरलम के चार जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिया ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
2: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
1: On safety and security of Indian vessels and seafarers, Mr. Jaiswal said, New Delhi attaches high priority to the issue. He said Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said 24/7 helplines are being run so that any person who needs support can also approach them. Replying to a question on the press conference of former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, Mr. Jaiswal reiterated that India had no role to play in the event, which was organized by a private media entity. On last night's telephonic conversation between Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the MEA spokesperson said both leaders discussed the ongoing situation and developments in West Asia. The spokesperson said that during the conversation between the two leaders, strengthening the cooperation across various sectors was discussed. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify

0: dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. The Rajya Sabha today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House assembled this morning, Chairman C.P. Radhakrishnan paid tributes to the freedom fighters and martyrs of the Quit India movement. The House also observed silence in honour of the freedom fighters and martyrs. After that, the reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Defence, Ministry of Home Affairs, Commerce and Health and Family Welfare were tabled in the House. Later, Mr. Radhakrishnan took up the Zero Hour amid opposition uproar. India's national public procurement platform government e-marketplace GEM has achieved a cumulative gross merchandise value of over 20 lakh crore rupees in the last 10 years. GEM was launched on the 9th of August 2016 to transform public procurement through technology, transparency, efficiency and good governance. Addressing a press conference in New Delhi, GEM CEO Mihir Kumar said that the GEM's business has grown from 422 crore rupees in 2016-17 to over 20 lakh crore rupees now. President Draupadi Murmu today conferred the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. A total of 22 awards comprising the 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards were conferred. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi tomorrow. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduate and postgraduate students and 587 PhD scholars. Rains slashed several parts of North and Northwest India today. A yellow alert for moderate to heavy rainfall has been issued for Delhi today. Rainfall is also expected to continue over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand till the 12th of this month. In the south, red alert indicating extremely heavy rainfall has been issued for 4 northern districts of Kerala. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में वार्ता, जिसका विषय है भारत की हथकरघा परंपरा। वार्ताकार हैं पार्थो सेन।
2: भारतवर्ष की हथकरघा परंपरा हजारों साल पुरानी एक समृद्ध कला है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार और रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। हाथ से चलने वाले करघों पर बुना गया हर कपड़ा स्थानीय कारीगरी और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का अनूठा प्रतीक है, और इस गौरवशाली इतिहास को याद रखने और बुनकरों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। श्रोता बंधुओं, सिंधु घाटी सभ्यता वस्त्रों के कुछ सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों से सूती धागों और रंगाई के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। मध्ययुग में विभिन्न राजवंशों के संरक्षण में भारतीय हथकरघा कला का विकास हुआ। मुगल काल में जटिल डिजाइनों, बनारसी, जामदानी और पश्मीना जैसे शानदार वस्त्रों के प्रचलन के साथ हथकरघा शिल्प अपने चरम पर पहुंचा। भारत का हथकरघा उद्योग, जिसमें लाखों करघे हैं, सबसे बड़ा कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। लाखों बुनकर बुनाई और संबंधित कार्यों से अपनी आजीविका कमाते हैं, जिससे हथकरघा ग्रामीण रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है। भारतीय हथकरघा परंपरा एक खूबसूरत कालीन की तरह है, जिसमें हर क्षेत्र, हर राज्य अपना रंग और अपनी अनूठी कला को जोड़ता है। आइए श्रोताओं,

भारत भर के कुछ प्रसिद्ध हथकरघा वस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी की बनारसी साड़ियां अपनी बेहतरीन रेशम और जटिल सोने चांदी के जरी के काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी मजबूती और चमकदार रेशम के लिए जानी जाती है। पश्चिम बंगाल की जामदानी एक बेहद बारीक और जटिल मलमल बुनाई है। ओडिशा और तेलंगाना की इक्कत और पोचमपल्ली बुनाई धागों को रंगने की अनूठी तकनीक एवं ज्यामितीय डिजाइनों के लिए मशहूर है। गुजरात की पटोला साड़ियां अपने दोहरे बंधेज और चटकीले रंगों के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपने हल्केपन और पारंपरिक रूपांकनों जैसे मोर फूल के कारण गर्मियों के लिए बेहतरीन मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश की किन्नौरी बुनाई, पंजाब हरियाणा की फुलकारी, उत्तराखंड की पंचाचूली बुनाई, बिहार की भागलपुरी सिल्क, झारखंड की टसर सिल्क, कर्नाटक के उडुपी कपास, गोवा के कुनवी बुनाई, सिक्किम के लेपचा, त्रिपुरा की पचरा, मिजोरम में मिजू पुआन और मेघालय के एरी रेशम, अरुणाचल प्रदेश के अपातानी आदि भी हमारी हथकरघा बुनाई की विशिष्ट परंपराएं हैं। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा विभिन्न बुनाई तकनीकों, डिजाइनों और रूपांकनों का एक अनूठा संगम है जो क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। पंजाब की जीवंत फुलकारी से लेकर ओडिशा की जटिल इक्कट तक हर हथकरघा कपड़ा एक अनूठी सांस्कृतिक कहानी बयां करता है। इसमें से कई वस्त्र स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं और अक्सर शादियों, त्योहारों और धार्मिक समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथ से बुने वस्त्र भारत की विविधतापूर्ण पहचान को भी दर्शाते हैं। पारंपरिक रूपांकन, रंग और पैटर्न विभिन्न समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गहराई से समाये हुए हैं। जटिल डिजाइनों में अक्सर स्थानीय लोक कथाओं, धार्मिक प्रतीकों और प्रकृति के तत्व शामिल होते हैं जो एक समृद्ध दृश्य भाषा का निर्माण करते हैं जो कि पीढ़ियों को जोड़ती है एवं स्वदेशी विरासत को संरक्षित करती है। भारत में हथकरघा उद्योग से रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बुनकर और संबंधित श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। अनेक महिलाएं हथकरघा बुनाई को अपनी आय का मुख्य स्रोत मानती हैं, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय का भरण पोषण करती हैं। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत कपड़ा उत्पादन के विपरीत हथकरघा क्षेत्र श्रम साध्य है, जिससे रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित होते हैं। विशेष रूप से सीमित औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में ये विकेंद्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा देकर और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करके सतत आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक रंगों और जैविक सामग्रियों पर जोर देने से इस उद्योग की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भी बढ़ जाती है। हथकरघा भारत की समृद्ध टेक्सटाइल संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। ये एक ऐसे धागे के रूप में मौजूद है जो भारत के इतिहास, आदर्शों पर डटे रहने की क्षमता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और विकास को बांधे हुए है। देश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का ये बेजोड़ ताना बाना अद्भुत अनुभव की अनुभूति देता है। हथकरघे का हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक परंपरा में एक विशेष स्थान है और बदले में ये अपने रूपांकनों के माध्यम से उन क्षेत्रों के रीति रिवाजों को दर्शाता है। वर्षों पर डटे रहने की क्षमता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और विकास को बांधे हुए है। देश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का ये बेजोड़ ताना बाना अद्भुत अनुभव की अनुभूति देता है। हथकरघे का हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक परंपरा में एक विशेष स्थान है और बदले में ये अपने रूपांकनों के माध्यम से उन क्षेत्रों के रीति रिवाजों को दर्शाता है। हाल के वर्षों में हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कई पहल शुरू की गई है, जिनमें से एक सबसे उल्लेखनीय प्रयास राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के माध्यम से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है, जो बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। हथकरघा परंपराओं को पुनर्जीवित करने में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्लेटफॉर्मों ने
कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर

0: राष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान की है। ये प्लेटफॉर्म बुनकरों को बिचौलियों से बचाने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें उचित मजदूरी मिल जाती है और ये सुनिश्चित होता है कि पारंपरिक कौशल आर्थिक रूप से टिकाऊ बने रहें। श्रोताओं, डिजाइनरों और बुनकरों के बीच इस प्रकार के सहयोग से हथकरघा में नई रुचि पैदा हो रही है। भारतीय फैशन डिजाइनर अपने संग्रहों में हथकरघा वस्त्रों को अधिक से अधिक शामिल कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इंडिया हैंडलूम वीक जैसे आयोजनों ने हथकरघा उत्पादों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें समकालीन आकर्षण प्रदान किया है, साथ ही उनकी जड़ों से भी जुड़ाव बनाए रखा है। हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना केवल रोजगार बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस जीवंत विरासत को संरक्षित करने का भी मामला है जिसने सदियों से भारत की पहचान को आकार दिया है। सही पहलों के साथ भारतीय हथकरघा वस्त्रों को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है, जिससे उन्हें बनाने वाले कारीगरों, श्रमिकों और उस देश को गर्व महसूस होगा जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में वार्ता, जिसका विषय था भारत की हथकरघा परंपरा। वार्ताकार थे पार्थो सेन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है ये क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित। हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर को 194 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, सिद्धार्थ नगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बनेगा जनपद। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी के 80 घाट पर बदला गंगा आरती का स्थान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में साल 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बल।

0: उत्पत्ति हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: कार्यक्रम में वाराणसी के नसीम अंसारी को इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार लुप्त प्राय बुनाई श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों बुनकरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के समस्त शिल्पकारों और बुनकरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैंडलूम और पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारीबाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40,000 से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की।
2: हमारा प्रयास यही होना चाहिए, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर में 706.81 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंबेडकर नगर विकास के मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंबेडकर नगर को एक्सप्रेसवे से जोड़कर जिले को विकास में गति दी है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी अंबेडकर नगर को बनाया जा रहा है।
3: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थ नगर के बांसी से होते हुए, बसी होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको प्रयागराज तक पहुंचाएंगे।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सतत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिदिन विद्यार्थियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रन फॉर नशा मुक्ति, मैराथन, नुक्कड़ नाटक जैसी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में

0: कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कांवड़ यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उधर मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िए शिव चौक स्थित मंदिर में बाबा भोलेनाथ के समक्ष माथा टेककर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिले के सभी मुख्य मार्ग बंद होने के कारण शिवरात्रि तक स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और एटीएस के जवान तैनात किए गए हैं। मेरठ में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी रख रहे हैं।
1: समय समय पर सभी ऑफिसर्स डेली ड्यूटीज चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना आवश्यक है। प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार का जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो कांवड़ मार्ग के साथ। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक यहाँ पर भी डुअल लेन हाईवेज है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि आने जाने के मार्गों का सेपरेशन रहे और किसी प्रकार की जो है ओवरटेकिंग इत्यादि की कोई दुर्घटना ना हो।
0: पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण 80 घाट पर होने वाली आरती के स्थान को 10 फीट ऊपर कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद गिरावट आने का अनुमान भी जताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है ये क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित। हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को 194 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा ये जनपद। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी के 80 घाट पर बदला गंगा आरती का स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को उषा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी कुशलता से होंगे और बारिश में रिमझिम रिमझिम फुहारों का आनंद ले रहे होंगे। कहीं बारिश में पकौड़ों का आनंद लिया जा रहा होगा तो कहीं मीठी मीठी मल्हार सुनी जा रही होगी। बच्चों के तो आनंद ही आ जाते हैं बारिश में, कभी रहने दे तो कभी बारिश में भीगना।

बरसात के मौसम का भी अपना अलग ही मजा है। प्रकृति में हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिससे मन को सुकून और शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, भारतवर्ष को त्योहारों का देश भी कहा जाता है क्योंकि हर महीने कोई न कोई त्योहार पड़ता ही रहता है। हर राज्य के अपने अलग त्योहार हैं, पर पूरा देश इन त्योहारों को पूरे जोश के साथ मनाता है, जिससे विविधता में एकता का अनुभव होता है। साथियों, आज हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य में मनाई जाने वाली केर पूजा के विषय में। केर पूजा त्रिपुरा राज्य का एक अत्यंत प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। ये पूजा त्रिपुरा की पारंपरिक जनजातीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर्व का आयोजन राज्य तथा समाज की सुख शांति समृद्धि, रोगों से रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्रिपुरा के लोग इस पूजा को बड़ी श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं। केर पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये लोगों को एकता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। साथियों, केर शब्द का अर्थ है सीमा या रक्षा का घेरा। इस पूजा के दौरान इस एक निश्चित क्षेत्र को पवित्र मानकर उसकी सीमा निर्धारित की जाती है। मान्यता है कि सीमा के भीतर देवता निवास करते हैं और पूरा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इस अवधि में उस सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का उल्लंघन करना अशुभ माना जाता है। केर पूजा का आयोजन प्रायः प्रसिद्ध खारची पूजा के लगभग 14 दिन बाद किया जाता है। ये पूजा मुख्य रूप से त्रिपुरा की जनजातियों द्वारा आरंभ की गई थी, लेकिन आज सभी समुदाय के लोग इसे श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये पर्व राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुका है। केर पूजा के दौरान पूरा पुजारी पारंपरिक विधि विधान से देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। पूजा स्थल को पहले शुद्ध किया जाता है और फिर मंत्रोच्चार के साथ पूजा आरंभ होती है। नारियल, फल, फूल, चावल तथा अन्य पारंपरिक सामग्री अर्पित की जाती है। साथियों, कुछ स्थानों पर स्थानीय परंपराओं के अनुसार विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पूजा का उद्देश्य राज्य और समाज को सभी प्रकार की विपत्तियों, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखना होता है। साथियों, बात हमारी अभी आगे जारी रहेगी, पर उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा में मनाई जाने वाली केर पूजा के विषय में। साथियों, इस पूजा की सबसे विशेष बात इसके कठोर नियम हैं। पूजा के दौरान निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता। वाहन चलाना, तेज आवाज करना तथा अनावश्यक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहती हैं। इन नियमों का पालन सभी लोग मिलकर करते हैं। इससे अनुशासन, सहयोग और सामाजिक एकता की भावना मजबूत होती है।

त्रिपुरा की संस्कृति में प्रकृति का विशेष महत्व है। केर पूजा भी प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देती है। लोग मानते हैं कि यदि प्रकृति का सम्मान किया जाए और उसकी रक्षा की जाए तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का भी संदेश मिलता है। केर पूजा त्रिपुरा की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर लोग अपने पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हैं। युवा पीढ़ी भी इस पर्व के माध्यम से अपने इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के बारे में सीखती है। इससे उनकी अपनी संस्कृति के प्रति रुचि और सम्मान बढ़ता है। इस पर्व का सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। पूजा के अवसर पर समाज के सभी लोग मिलकर आयोजन में भाग लेते हैं और साथियों इससे आपसी प्रेम, भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट होकर कार्य करें। आज के आधुनिक समय में भी केर पूजा का महत्व कम नहीं हुआ है। बदलती जीवन शैली के बावजूद त्रिपुरा के लोग अपनी इस प्राचीन परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। राज्य सरकार तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं भी इस अनूठी परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करती हैं। इससे देश विदेश के लोग त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से परिचित होते हैं। साथियों केर पूजा हमें सिखाती है कि हमारी परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उनमें समाज की सुरक्षा, अनुशासन, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामूहिक जीवन का गहरा संदेश छिपा होता है। ये पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अनमोल पर्व है। हमें ऐसी महान सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न करने की उषा सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा कुछ ही क्षणों में।

अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार किस

स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों की भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुल्ता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी

0: प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है संवेद स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से विधानमंडल समीक्षा कुछ ही क्षणों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले कव्वाली। कार्यक्रम की पहली कव्वाली है मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम महफिले कव्वाली अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे। शब्द रचना है निदा फाजली की, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत। मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म का नाम है कनवर लाल। शब्द रचना है हिंदीवर की, संगीत दिया है वप्पी लहरी ने।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्न

0: कार्यकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज

0: दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
1: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. Now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the Trade Receivables Discounting System. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. More from our correspondent.
3: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the Houses. Earlier, both the Houses paid tributes to the freedom fighters to mark the 84th anniversary of Quit India Movement. The Lok Sabha also completed its legislative business by passing the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. As both the Houses were adjourned early, the private members' business could not be taken up. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favored nation status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India took a

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासिमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग के तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस खलल पड़ा। अपोजिशन अराकीन के जरिए जारी शोर शराबे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जुहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनातों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज़ इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चूंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई जल्द ही मुलतवी कर दी गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं किया जा सका। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं, जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन

0: को मुंजबित करते हैं।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन मालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइन्स फाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइन्स पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आज़ादाना तिजारत के लिए जोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाज़ों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़श्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में जारी सूरतेहाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खुसूसी जामे शराकत दारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरतेहाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलात पर करीबी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत अफ्रीका फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना चाहता है। दोनों ममालिक मौजूद तारीख तय करने के लिए एक दूसरे के रबते में हैं और ये तय करेंगे कि चोटी कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की जा सकती है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से आज़ाद माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क MFN का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद सिंध आबी माहदे को मुलतवी करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने, वीज़ा महदूद करने और मुतालिका मिशनों में सिफारतकारों और अफसरान की तादाद को कम करने समेत मुख्तलिफ सिफारती इकदाम किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की फौजी कार्रवाई भी की गई है। भारत और श्रीलंका ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान बिजली के शोबे में दोतरफा तआवुन का जायजा लिया। इस दौरान भारतीय वफ्द की क्यादत बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने की, जबकि श्रीलंका के वफ्द की क्यादत बंदरगाहों, शहरी आवाबाजी और तवानाई के वजीर अनुरा करुणा तिलक ने की। बिजली की वजारत के मुताबिक दोनों वजीरों ने मुजवजा श्रीलंका भारत HVDC इंटरकनेक्शन और संपूर शमसी बिजली प्रोजेक्ट समेत जारी दोतरफा पहलों की पेशरफ का भी जायजा लिया। दोनों वजीरों ने सरहद पार बिजली की फरोख्त, काबिल तजदीद तवानाई, तरसील के बुनियादी ढांचे और सलाहियत साजी के शोबों में इश्तराक को वसत देने से मुतालिक इम्कान पर तबादला ख्याल किया। भारत ने टैरिफ पर मबनी मुसाबिकती नीलामी के फ्रेमवर्क के जरिए तरसील के निज़ाम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तौर पर तैयार करने का अपना तजुर्बा मुश्तरक किया। ब्रिक्स वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग आज भुवनेश्वर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान इत्तेफाक राय से एलामिया को अपनाया गया। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये एलामिया मजबूत इदारा जाती इश्तराक, सलाहियत साजी और मालूम के इश्तराक के जरिए शमूलियाती, लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार तालीमी निज़ाम की तश्कील के लिए ब्रिक्स ममालिक की अहद बस्तगी की तौसीख करता।

0: वजीर तालीम ने कहा कि इस मीटिंग में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान, इथियोपिया और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए तालीम ने शिरकत की। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स और इसके हलीफ ममालिक मिलकर आलमी GDP के तकरीबन 40% हिस्से और तकरीबन दुनिया की निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद से खिताब करेंगे। वजीर अजम 587 PhD स्कॉलर्स और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा समेत IIT दिल्ली से फारिग होने वाले 3000 से ज़्यादा तलबा से खिताब करेंगे। इस बारे में आज नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IIT दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बैनर्जी ने कहा कि जनाब मोदी होनहार तलबा में सदर जमहूरिया के गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इदारे के सबसे बावकार इनामात तफवीज़ करेंगे। जनाब बैनर्जी ने मजीद कहा कि वजीर अजम IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम AI से चलने वाले हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञ का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। भारत के कौमी सरकारी खरीदारी के प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने गुज़िश्ता 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मालियत की जामे मजमू तजारत का निशाना हासिल कर लिया है। GEM के का आगाज़ 9 अगस्त 2016 को किया गया था। इसका मकसद टेक्नोलॉजी, शफाफियत, कारकर्दगी और अच्छी हुक्मरानी के जरिए सरकारी खरीदारी के निज़ाम की काया पलट करना था। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए GEM के CEO मिहिर कुमार ने कहा कि GEM का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है।
1: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कॉरपोरेट पेशावर अफराद और माली शोबे के पेशावर अफराद को बॉस स्कैम या खुद को CEO जाहिर करने वाले धोखे से खबरदार किया है। एक बयान में वजारत दाखिले ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों के जरिए पेशावर और कारोबारी अफराद के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने से मुतालिक वाकयात की शिकायतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। भारत ने महज 3 साल के अंदर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हासिल कर लिया है, जो कि मुकर्रर वक्त से काफ़ी पहले हासिल कर ली गई पेशरफ्त की अक्कासी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और राजस्थान में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक समेत शुमाल मशरक़ी भारत में कल के लिए शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने की भी पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तूंध हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, तेलंगाना, गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कल इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी में गुज़िश्ता 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और बिजली चमकने के साथ साथ शदीद बारिश हुई। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में फर्क पड़ा और बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। मजीद बरां, भारत के महकमे मौसमियात ने कल के लिए हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अभी।
0: इस दौरान केरलम के 4 जिलों में बहुत शदीद बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: शिमाली केरलम के अजला कसारागोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अजला आज दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट के तहत थे। दीगर 4 अजला में भी शदीद बारिश के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के बकिया 6 अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश के सबब अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। शनिचर के रोज़ के लिए 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की शिद्दत में इतवार से कमी आने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लारूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में नौजवानों और जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग

चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की वेटलिफ्टर तितली माझी ने 45 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर तमगा अपने नाम किया। इसी मुकाबले में भारत की परिश्मिता गोगोई ने चौथा मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाज़रानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज़ कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज़्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: current affairs.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत है अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में, फिल्म का नाम है अंगारे। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनजाना। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है आराधना। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है SD वर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है काशिद जी और शिप्रा राव की आवाज में. फिल्म का नाम है अनवर. शब्द रचना है हसन कमाल की, संगीत दिया है मिथुन ने.

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत। चित्रा की आवाज में फिल्म का नाम है अरमान। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं पुरुषोत्तम दत्त शर्मा। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग देश में ध्रुपद धमार गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुरुषोत्तम दत्त शर्मा का राग देश में ध्रुपद धमार गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by